0: चर्चा होगी। राष्ट्रपति गी पाहमला 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत और EFTA के बीच TEPA पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से लागू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन GSMA के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस आज से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी सरकार के प्रमुख के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और हिरासत में लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन्हें 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का अगला मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है और आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसे ही मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: फेसबुक ने स्काई, व्हाट्सएप इन लाइफ, मान मोड काम, इतनो आराम, सो स्टार्ट अप योर डे विथ रेनबो फंडे, रेनबो फंडे।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया। पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और भारत ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। सूचना और प्रसारण मंत्री

0: किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
1: जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे कि इस दृष्टिकोण को गोवा के सागरमाला कार्यक्रम ने किस तरह साकार किया है।
2: देश की 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और करीब 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जल मार्गों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, बेहतर समुद्री संपर्क, तटीय नौवहन को बढ़ावा देने और तटीय समुदायों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की समुद्री क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर आर्थिक विकास को गति देने पर जोर दिया है।
3: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
2: समुद्र और जलमार्ग गोवा की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सागरमाला कार्यक्रम के तहत राज्य में बंदरगाहों और जलमार्गों के विकास के साथ साथ क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। गोवा के कैप्टन पोर्ट्स ऑक्टोवियो रोड्रिक्स ने आकाशवाणी को बताया कि सागरमाला के तहत राज्य में किस प्रकार की पहलें की जा रही हैं।
4: इट इज गोइंग टू चेंज मेनी जेटीज नाउ सी अनदर 10 जेटीज वी आर गोइंग टू गेट ऑलरेडी अप्रूव्ड और ओनली थिंग नाउ वी हैव नीड टू इंस्टॉल इट। दे आर ऑल फ्लोटिंग जेटीज व्हिच विल टेक केयर ऑफ द टूरिज्म एक्टिविटीज ओवर देयर, पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू आल्सो कम अप विद द ऑटो मेट्रो।
2: गोवा में अब तक सागरमाला के तहत 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जिन पर करीब 841 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वहीं करीब 98 करोड़ रुपए की 2 अन्य परियोजनाएं फिलहाल कार्यान्वयन के चरण में हैं। इन परियोजनाओं से गोवा के बंदरगाहों और जलमार्गों का आधुनिकीकरण हो रहा है और उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल संभव हो रहा है। साथ ही क्रूज पर्यटन और तटीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पहले के ढांचे के तहत शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
5: इन कार्यों को 4 विषयगत स्तंभों, जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत में ये विचार प्रकट किए।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू हो

0: इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 1.5 लाख से अधिक लोग, 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप और 900 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन।
2: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। श्री बिरला ने पोरवोरिम में गोवा विधानसभा परिसर के रजत जयंती समारोह में ये बात कही। एक रिपोर्ट।
5: गोवा ने अपनी विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए देश की आर्थिक प्रगति के साथ कदम मिलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहमति और असहमति दोनों लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। आजादी के बाद से भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने विभिन्न विचारों, मतों और दृष्टिकोणों को साथ लाने का काम किया है। श्री बिरला ने कहा कि देश और विदेश में आपदा के समय भारत के लोग हमेशा एकजुट होकर खड़े रहे हैं। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
3: विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक कल विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर जाते समय सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। बाद में शाम को SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 क्रिकेट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ने पेचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
6: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 साल पूरे होने को अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। उपलब्धि शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मोदी का अनूठा रिकॉर्ड, लगातार सत्ता में 25 साल पूरे, कोई चुनाव नहीं हारे। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने दैनिक जागरण में लिखा है, असाधारण जनसेवक हैं प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अमर उजाला में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव को संभव बनाया है। उन्होंने अपने कामों से यह दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल न किया जा सके। छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, हिंदुस्तान की सुर्खी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के SME विकास कोष को दी मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत 8 स्थानों पर CBI के छापे को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के OSD सहित 6 के खिलाफ FIR दर्ज। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अब नए वायुसेना प्रमुख। लोकसत्य में एयर मार्शल मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे को प्रमुखता दी गई है। विश्व बैंक ने भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया।
3: धन्यवाद देवेंद्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया, पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की, कहा प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। और मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi completes 25 years as head of a government. Union Cabinet passes resolution to commemorate this landmark achievement. Government notifies 375 permissible works under Viksit Bharat G. Ramji scheme, marking 41% expansion from previous 266 works. Prime Minister Modi interacts with board members of Global System for Mobile Communications Association, says technology must become a tool for inclusive and sustainable development. RBI to announce bi-monthly monetary policy this morning. IMD forecasts heavy rain in Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. And in men's cricket, India beat West Indies by 8 wickets in the first T20 international, taking 1-0 lead in the 5-match series. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years as head of a government today. His tenure is equally split, consisting of 5 years as Chief Minister of Gujarat and 12.5 years as Prime Minister. It was on this day in 2001, Mr. Modi was first sworn in as Chief Minister of Gujarat. He became Prime Minister in May 2014. We have more from a correspondent.
8: To commemorate this landmark achievement, Union Cabinet passed a resolution highlighting his governance journey. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that Mr. Modi's 25-year tenure is a testimony to the strength of Indian democracy. He said a person from an ordinary family who dedicated himself to the service of the nation and is continuing to serve the country is a major example of the vitality, vibrancy and maturity of the democracy. Mr. Vaishnav said that Prime Minister Modi has created history that is unique in any democratic country. He said there are very few countries in the world where the people have repeatedly extended their support to a single leader. The minister said this support has been given because of his style of functioning, his right policies and his clear and good intentions. The minister highlighted 10 major points of this cabinet resolution. The first point is the expansion of the vision of development from Gujarat to the entire country. He said Prime Minister Narendra

0: रानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के, यह बम्बई मेरी जान। गुड मॉर्निंग मुंबई, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने फेवरेट मॉर्निंग शो मस्त मुंबई में, ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम म्यूजिकली योर्स। और आज मैं हूँ आपका रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरा विश्वास है कि आप एकदम खुश होंगे और इसी खुशी को दुगना करने के लिए हम हैं ना आपके साथ। आज है बुधवार, वेडनेसडे, और आपके इस वेडनेसडे को और भी खास बनाता है हमारा खास सेगमेंट मुंबई के मतवाले राही, जहां होती है मुंबई की लोकल ट्रेन से जुड़ी प्यारी प्यारी बातें, किस्से और कहानियां। क्योंकि मुंबई की लोकल ट्रेन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का साधन नहीं है, ये मुंबई की रफ्तार है, मुंबई की पहचान है और कहीं ना कहीं मुंबई की धड़कन भी है। और सच्ची तो है भाई, जिसने मुंबई की लोकल में सफर नहीं किया ना, उसने शायद मुंबई की धड़कन को पूरी तरीके से नहीं महसूस किया। तो आज इस धड़कन को हम थोड़ा और करीब से सुनेंगे, कुछ किस्से और कहानियां आपके साथ शेयर करूंगा, और इस सफर में होंगे बहुत प्यारे प्यारे गाने भी। और हाँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर्स 8657661 पर आप दीजिए मैसेज। और अब आपके लिए बहुत ही औसम सा गाना, एनर्जी वाला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ फ्रॉम द मूवी फुकरे।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल।
1: म्यूजिकली योर्स।
2: दिल से सुनती आये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां।
3: सुबह चर्च गेट, शाम विरार, इसी बीच अटकी है जिंदगी यार। हाथ में रुमाल, कंधे पर बैग, फिर भी चेहरे पर है मुंबई वाली मुस्कान यार। आप सुन रहे हैं मुंबई के मतवाले राही, ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स। और मैं हूं आपका रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। देखिए जनाब, जब भी हम लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, अपने स्टेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और हो सकता है कि कई बार सफ़र लंबा हो, जर्नी थोड़ी लंबी हो, और हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि हमारे पास कोई शख्स बैठा है या बैठी हो, अचानक उससे वाइब्स मिल गई, एनर्जी मैच कर गई, और अचानक हम दोनों में से किसी ने भी एक छोटी सी बात शुरू कर दी। अरे आज मौसम बड़ा अच्छा है, आज तो बहुत ही गर्मी है, आज तो बहुत ही भीड़ थी, बस इतनी सी बात होती है, लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है, एक बात से दूसरी बात निकलती है और दूसरी से तीसरी, और कुछ ही मिनटों में हम उस इंसान से ऐसे बात करने लगते हैं जैसे पहले से उसे जानते हो, जैसे रोज़ मिलते हो। और मज़े की बात बताऊँ क्या है, कई बार हम उस इंसान से उसका नाम तक नहीं पूछते।

लेकिन बातों बातों में वो शख्स हमें ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बात सिखा जाता है, कुछ ऐसी सीख दे जाता है। शायद उस वक्त हो सकता है हमें वो बात छोटी लगे, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है कि यार उस अनजान इंसान ने तो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। फिर आपका या उसका स्टेशन आ जाता है और दोनों अपनी अपनी राह बदल लेते हो, और हो सकता है कि वो इंसान आपको दोबारा कभी नहीं मिले, लेकिन उसकी कही वो एक बात आपके साथ रह जाती है और आप हमेशा याद करते हैं। दूसरों को भी बताते हैं कि यार एक शख्स मुझे लोकल में मिला था, उसने मुझे एक ऐसी बात सिखाई जिसने ज़िंदगी में बहुत मदद की। फिर आप कभी उसी जब रूट पे जाते हैं, उसी लोकल में सफ़र करते हैं, तो आपकी नज़रें उसी शख्स को ढूंढती है, क्या पता आज फिर दिख जाए। यही तो खासियत है मुंबई की लोकल की, जहां लोग सिर्फ साथ सफ़र नहीं करते, कभी कभी एक दूसरे की ज़िंदगी में एक छोटी सी कहानी छोड़ जाते हैं, एक बहुत अच्छा लेसन सिखा जाते हैं। और हमारा वेडनेसडे स्पेशल मुंबई के मतवाले राही ऐसी ही कुछ कहानियों का सफ़र है, और सफ़र अभी बहुत बाकी है। और अब आपके लिए सुखविंदर और सपना अवस्थी की आवाज़ में ये वाला गाना आ रहा है फ्रॉम द मूवी दिल से। भाई ट्रेन की बात हो रही है तो ये गाना तो सुनना बनता है बॉस। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन FM रेनबो 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।
2: दिल से सुनती आये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो।
3: मुंबई की ट्रेन की पटरियां हर मुंबईकर की उम्मीद की धड़कन है। किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचना है, किसी को पैसा कमाना है, किसी को अपनों से मिलना है और किसी को अपने सपनों को पूरा करना है। और मैंने कहीं सुना था मुंबई किसी को निराश नहीं करती, और बिल्कुल सही सुना है। आप सुन रहे हैं मुंबई के मतवाले राही, ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम, और मैं हूं आपका रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। जनाब, ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि कभी कभी लोकल में हमें कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जो जिंदगी से जुड़ी छोटी सी लेकिन बहुत अच्छी बात सिखा जाता है। लेकिन कभी कभी लोकल में ऐसा भी होता है कि हम किसी की कहानी सुनते सुनते उसकी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। हुआ है ना आपके साथ ऐसा? एक बार मेरे साथ भी हुआ था। दो लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे। दरअसल मैं चर्च गेट से जा रहा था अंधेरी की तरफ। दो लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे और उन दोनों में से एक भाई साहब अपने पड़ोसी भल्ला साहब की कहानी सुना रहे थे। बाकायदा भल्ला साहब की बुराई कर रहे थे। वो कह रहे थे, यार ये भल्ला साहब ना मेरी प्राइवेसी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, और बकायदा उनकी आवाज़ और अंदाज की नकल करते हुए बोल रहे थे, भाभी जी, भाई साहब, क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो? मेरा मन हुआ कि मैं बोलूँ, नहीं नहीं भाई साहब, मैं खाना नहीं खा रहा, मैं ना थाली में ना मंजन कर रहा हूँ। अरे, और जब मेरी पत्नी खाना बना रही होती है तो वहाँ भी आधमकते हैं, पूछते हैं, भाभी जी क्या बना रहे हो? भल्ला साहब को मालूम है कि भाभी जी भिंडी बना रही है, फिर भी पूछेंगे और बार बार अपनी निगाहें भिंडी पर ही गड़ाए रखेंगे। फिर मेरी बेचारी बीवी भोली भाली सीधी सादी कहती है, लो भाई साहब थोड़ी आप भी ले जाओ ना, और गलती से कभी संडे को मेरे घर आ गए ना, फिर तो सवालों की पूरी लिस्ट तैयार है। ओ जी तुसी किन्ना कमांदे हो, मुंडा की करता है, मुंडा किन्ने पैसे कमांदा है, कुड़ी दा व्याह कब कर रहे हो? ये पूरी कहानी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, और मज़े की बात यह है कि थोड़ी देर बाद मुझे भी भल्ला साहब पे गुस्सा आ गया, और मेरे मन में आया कि भाई इतने सवाल कौन पूछता है, जबकि सच बात तो ये है कि भल्ला साहब को मैं जानता तक नहीं, लेकिन उनकी

कहानी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि कुछ ही मिनटों में मैं भी उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बन गया। और आप सभी के साथ हुआ होगा, आपने किसी कहानी या किसी गॉसिप सुनी होगी सफ़र करते हुए, कुछ देर तक तो वो कहानी आपके दिमाग में ज़रूर घूमी होगी। आपका स्टेशन आ गया, उनका स्टेशन आ गया, दोनों ने अपनी अपनी राह बदल ली, लेकिन थोड़ी देर उस कहानी के किरदार आपके दिमाग में ज़रूर घूमे होंगे। नाम पता नहीं, स्टेशन पता नहीं, लेकिन कहानी याद रह जाती है। और इस प्यारे से सफर में चार चांद बताऊं कब लगते हैं, जब हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं। कुछ लिसनर्स का मैं नाम लेना चाहूंगा, राकेश माथुर जी है पुणे से, वासुदेवन जी है बदलापुर से, फिरोज जी है, पंकज मोहड़ी जी है, रजनीकांत पाटिल साहब है वादेवन से, सुरेश वनकर जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए मुंबई, अभी तो सफ़र और बाकी है, मुंबई के मतवाले राही की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आपके लिए चलाते हैं बहुत ही ऑसम जर्नी सॉन्ग फ्रॉम द मूवी स्वदेश, ओनली ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स।

0: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
1: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
0: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध। कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि।
1: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: गोकुल की राधा चली
2: ओ चली ओ चली,
1: गोकुल की राधा चली
2: ओ चली चली चली,
1: गोकुल की।

0: गोकुल की रा
1: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
2: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
1: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
2: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
1: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
2: म्यूजिकली योर्स।

0: सबके अलग है अंदाज, कोई मजाकिया
1: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
2: कोई लुभाए शेरो शायरी से
1: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
3: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
0: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
4: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।
5: दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के।
2: वेलकम बैक टू FM रेनबो, ओनली ऑन 107.1 FM म्यूजिकली योर्स। और आज है 7 अक्टूबर और इन दिनों चल रहा है नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2026। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक यानी कल तक ये वीक है। और अब वाइल्ड लाइफ का नाम सुनते ही टाइगर या लॉयन को याद नहीं करना है, हमारे आसपास की चिड़ियाएं, बटरफ्लाइज, रेप्टाइल्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, ये सभी मिलकर नेचर की पूरी कहानी लिखते हैं। और इस पूरे वीक का मकसद है वाइल्ड लाइफ को सिर्फ देखना नहीं बल्कि समझना, अप्रिशिएट करना और उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी महसूस करना। तो इस वीकेंड थोड़ा सा जंगल वाला दिल रखिए, नेचर को थोड़ा वक्त दीजिए, पेड़ लगाइए, पानी बचाने की कोशिश करिए और याद रखिए हम नेचर के बाहर नहीं, नेचर का ही एक हिस्सा है। और अब आपके लिए एक पार्टी सॉन्ग आ रहा है शान और वसुंधरा दास एंड शंकर एहसान लॉय की आवाज में, फ्रॉम द मूवी कभी अलविदा ना कहना, ओनली ऑन 107.1 FM म्यूजिकली योर्स।
6: Natural night, do you feel alright? Wanna natural night?

0: रहिए 107.1 FM रेनबो
1: म्यूजिकली योर्स।
2: सबके अलग है अंदाज, कोई मजाकिया
3: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
4: कोई लुभाए शेरो शायरी से
3: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
5: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
6: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
2: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।
7: दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम।
6: टेंशन के काले बादलों के बीच खुशियों का रेनबो घर सजाना हो तो सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।
8: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
9: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
8: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी।
2: पगली जीपीएस फॉलो करना, नहीं तो गुम हो जाएगी।
1: अगर गुम हो भी जाओ तो कोई बात नहीं।
2: बिल्कुल, क्योंकि पंछियों के पास भी कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें।
1: हाय, ये है एफएम रेनबो 107.1। यूं ही खट्टी मीठी बातों से जीत लेंगे आपका मन,
2: क्योंकि हम हैं म्यूजिकली यार्स।
3: ओ जीते लम्बे लम्बे सिल की जे बाल, ओ कुड़ी कौन नच दी, कौन नच दी।
2: वेलकम बैक टू एफएम रेनबो, ओनली ऑन 107.1 एफएम, म्यूजिकली यार्स। एंड दिस इज योर रेडियो मित्र साकेत विद यू। भाई साहब, मुंबई की लोकल में अगर सीट मिल जाए ना तो उससे बड़ी खुशी क्या ही होगी। लेकिन सीट तक पहुंचने से पहले की जो कश्मकश होती है, मेहनत होती है, वो भी कम नहीं होती। आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ट्रेन का इंतज़ार हो रहा है, दूर से ट्रेन दिखाई देती है, और जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आती है, हर कोई जल्दी जल्दी जल्दी अपनी सीट लेने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, इस भागदौड़ में सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी सेफ्टी। ट्रेन एक मिनट लेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी ट्रेन आ जाएगी, लेकिन आप अपनी सेफ्टी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करिए। भीड़ में धक्का मुक्की से बचिए, ट्रेन में चढ़ते उतरते समय सावधानी रखिए, दरवाजे पर खड़े होकर या बाहर लटक कर बिल्कुल सफर मत करिए, इट इज वेरी रिस्की। और कभी कभी एक चीज और जरूरी है, लोकल में सफर कर रहे हैं, कभी कभी नहीं बिल्कुल हमेशा जरूरी है, लोकल में अगर आप सफर कर रहे हैं तो वैलिड टिकट या पास जरूर रखिए। कुछ हमारे बंधु सोचते हैं कि कोई ना, रोज बचते हैं, आज भी बच जाएंगे। लेकिन भाई साहब, रेलवे की चेकिंग कभी कभी बिल्कुल अचानक हो जाती है, इसलिए परेशानी से बचिए, टिकट लेकर ही सफर करिए। और हाँ, अपना फ़ोन, अपना लैपटॉप, अपना बैग, बाकी सामान का भी ध्यान रखिए। भीड़ में अपना सामान संभाल कर रखिए, खासकर अपना फ़ोन और वॉलेट ऐसी आप जगह रखिए जहाँ आपकी नज़रों में रहे, क्योंकि मुंबई की लोकल में हमें अपनी मंजिल तक भी पहुंचना है और सुरक्षित भी पहुंचना है। तो सफ़र करिए, मुंबई की रफ्तार का मज़ा लीजिए, लेकिन सावधानी के साथ। और हाँ, अब आपकी सुबह को और प्यारा बनाने के लिए एक ट्रेन वाला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, फ्रॉम द मूवी परिणीता सोनगम, और श्रेया घोषाल की आवाज़ में एंजॉय करिए, ओनली ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।

इलेक्शन के काले बादलों के बीच खुशियों का रेनबो घर सजाना हो तो सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।
1: म्यूजिकली योर्स।

0: अपनी पसंद की कोई भी कार ले, कॉस्मोस कार लोन है ना।
1: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
0: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
1: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।
2: बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी।
3: पगली जीपीएस फॉलो करना, नहीं तो गुम हो जाएगी।
2: अगर गुम हो भी जाओ तो कोई बात नहीं।
3: बिल्कुल, क्योंकि पंछियों के पास भी कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें।
2: हाय, ये है एफएम रेनबो 107.1। यूं ही खट्टी मीठी बातों से जीत लेंगे आपका मन,
3: क्योंकि हम हैं म्यूजिकली यर्स।
4: ओ जी दे लम्बे लम्बे सिल की जे वार, ओ कुड़ी कौन नच दी, कौन नच दी।
3: आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो ओनली ऑन 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स। और आज मस्त मुंबई में हम थे, मुंबई के मतवाले राही के इस खूबसूरत सफर पर, जहां हर बुधवार हम सुनते हैं मुंबई की लोकल ट्रेन से जुड़े कुछ प्यारे किस्से और कहानियां। लेकिन आज इन कहानियों को सुनाते सुनाते एक बात मेरे मन में आई, हमारी जिंदगी भी तो एक लोकल ट्रेन की तरह ही तो है, हम भी तो एक सफर पर ही निकले हैं। इस सफर में कुछ लोग हमारे साथ आते हैं, कुछ दूर तक हमारे साथ चलते हैं, हमारी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाते हैं, और फिर अपना स्टेशन आता है और उतर जाते हैं। फिर कुछ नए लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, नई बातें सिखाते हैं, नई यादें देते हैं, और हमारा सफर आगे बढ़ता रहता है। हमें अपनी मंजिल मालूम है कि हमें कहाँ पहुँचना है, और उस मंजिल के लिए हम हर दिन निकलते हैं। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी सफर में रुकावटें भी आती है, कभी कुछ स्टेशंस ऐसे आते हैं जहां मन करता है कि बस अब थोड़ा रुका जाए, लेकिन जिंदगी की ट्रेन कभी रुकती नहीं बाबू मशाय, हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है। इसलिए अगर आपका कोई वक्त अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी अच्छा वक्त आएगा। सुबह के 1-2 घंटे ख़राब हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिन अभी बाकी है। हफ्ते का पहला दिन अच्छा नहीं गया, पूरा हफ्ता बाकी है। महीने के 1-2 दिन अच्छे नहीं गए, कोई बात नहीं, अभी पूरा महीना बाकी है। क्योंकि एक खराब पल आपकी पूरी जिंदगी की कहानी तय नहीं कर सकता। इसलिए अपनी जिंदगी की ट्रेन में सफर करिए, और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए, क्योंकि क्या पता अगला स्टेशन आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी लेकर आपका इंतजार कर रहा हो। चलिए, अभी तो बहुत प्यारा है खूबसूरत सफर हमारी जिंदगी का। और हाँ, जाने से पहले उन तमाम श्रोताओं का नाम लेना बिल्कुल जरूरी है जो इस सफर में हमारे साथ खड़े रहते हैं एकदम सॉलिड। बाबा है दादर से, विजेंद्र घटोल जी अकोला से, चेतन कुमार जी हमारे साथ जुड़े, अजय साखारे जी इंदौर से, प्रणव शिंदे जी, प्रकाश वाघ जी पुणे से, शुभलक्ष्मी जी, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत थैंक यू। और अब आपके लिए 2 बैक टू बैक से गाने, ऑसम ब्लॉसम वाले। और हाँ, गानों के बाद होंगे समाचार, और समाचार के बाद हम जुड़ेंगे नमस्ते भारत से। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स।

0: यह आकाशवाणी का मुंबई केंद्र है। अब सुनिए समाचार। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम की सदस्य गोलकीपर सूरज कक्कर को कल मुंबई में सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम ग्रह ने विधान भवन में स्थित अपने कक्ष में उन्हें 50,000 रुपये की नकद राशि और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। अब सुनिए खेल समाचार। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। अब आप जुड़ेंगे नमस्ते भारत से।
1: टेंशन के काले बादलों के बीच खुशियों का रेनबो अगर सजाना हो तो सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: सबके अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज।

0: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
1: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।
2: दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के।
3: नारी, नारी सिर्फ घर की दीवारों के बीच सिमटी हुई कहानी नहीं है। नारी वो ताकत है जो मुश्किलों से लड़ते लड़ते अपनी पहचान खुद बनाती है। उसकी हिम्मत उसके सपनों से बड़ी होती है और उसका साहस दुनिया की हर चुनौती से भी ज्यादा मजबूत। वेलकम बैक टू FM रेनबो, ओनली ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स। और मैं हूं आपका रेडियो मित्र साकेत आपके साथ, और स्वागत है आप सभी का नमस्ते भारत में। और नमस्ते भारत में आज बुधवार का हमारा सेगमेंट है जीते हैं शान से। और आज जीते हैं शान से समर्पित है उन महिलाओं को, उन महान महिलाओं को जिन्होंने सपनों को सिर्फ देखा नहीं, उन्हें हकीकत में बदल दिया। और आज हम बात करेंगे उन महान नारी शक्तियों की जिन्होंने ये साबित किया कि हौसलों की कोई सीमा नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं नमस्ते भारत का, आगाज करते हैं मोहित चौहान की आवाज से फ्रॉम द मूवी दिल्ली 6। स्टे ट्यून्ड ऑन FM रेनबो 107.1 FM म्यूजिकल।

वेलकम बैक टू नमस्ते भारत, ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स। और आप सुन रहे हैं जीते हैं शान से, और आज जीते हैं शान से में सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी, जिनकी तलवार की गूंज से अंग्रेजी हुकूमत कांप उठी थी। एक ऐसी महान वीरांगना जिन्होंने कम उम्र में ही इतिहास की दिशा बदल दी, जिनका नाम लेते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो साहस की मिसाल थी, आत्मसम्मान की पहचान थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की तो इन महान वीरांगनाओं ने हार मानने से इनकार कर दिया। घोड़े पर सवार होकर, पीठ पर अपने बेटे को बांधकर, हाथ में तलवार लेकर उन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया। उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा, आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि नारी शक्ति क्या होती है। आज भी जब कोई महिला अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती है, अपने सपनों के लिए संघर्ष करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी की झलक दिखाई देती है। यह सिर्फ इतिहास नहीं, ये प्रेरणा है। और इसी जोश और गर्व के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं रानी लक्ष्मीबाई जी पर बनी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन से विजयी भवा गाना। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे कमर्शियल ब्रेक पर, छोटे से ब्रेक पर, उसके बाद होगा ये दमदार सा जीत के जश्न वाला गाना। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स।

0: रेनबो को रंगी बनाएंगे।
1: सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो,
2: म्यूजिकली योर्स।
1: सबके अलग है अंदाज, कोई मजाकिया
3: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
4: कोई लुभाए शेरो शायरी से
3: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
5: जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है।
6: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
1: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।
7: दम दम उड़ती है दुआ, सौ पंख लगा तेरे नाम के।
8: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।
1: म्यूजिकली योर्स।

0: को रंगी बनाएंगे।
1: सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो,
2: म्यूजिकली योर्स।
3: मैं एनी। मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज़ हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज़ और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं। है ना ये नामुमकिन सपना, लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

0: के अलग है अंदाज।
1: कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
4: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
1: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
5: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से

0: बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी।
1: पगली जीपीएस फॉलो करना, नहीं तो गुम हो जाएगी।
0: अगर गुम हो भी जाओ तो कोई बात नहीं।
1: बिल्कुल, क्योंकि पंछियों के पास भी कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें।
0: हाय, ये है एफएम रेनबो 107.1। यूं ही खट्टी मीठी बातों से जीत लेंगे आपका मन,
1: क्योंकि हम हैं म्यूजिकली यर्स।
2: ओ जीते लम्बे लम्बे सिल की जय बाल, ओ कुड़ी कौन नचदी, कौन नचदी।
3: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर, और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
4: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
3: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध, कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि,
4: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत, और नमस्ते भारत में शोन है, जीते हैं हम शान से। और अब हम बात करेंगे भारत की उस बेटी की जिसने सच में आसमां छू लिया और दुनिया को दिखा दिया हौसलों की कोई सीमा नहीं होती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी की। हरियाणा के करनाल जैसे एक छोटे शहर से निकलकर नासा तक का सफ़र तय करना कोई साधारण बात नहीं होती। बचपन से ही उन्हें आसमां से प्यार था। वो अक्सर हवाई जहाज़ों को देखा करती थी और सोचती थी एक दिन मैं भी उड़ूंगी। उन्होंने एरोमेटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। एरोनॉटिकल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अमेरिका जाकर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आगे पढ़ाई की और आखिरकार नासा का हिस्सा बनी। 1997 में उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी। वो पहली भारतीय मूल की महिला बनी जो स्पेस में गई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ स्पेस तक पहुंचना नहीं था, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी करोड़ों लड़कियों के मन में एक विश्वास जगाना कि अगर सपना बड़ा है ना तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। अफसोस, 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल मिशन के दौरान हमने उन्हें खो दिया। लेकिन सच कहें तो ऐसे लोग कभी नहीं जाते। उनका नाम आज भी हर साइंस क्लासरूम में गूंजता है। हर वो लड़की जो साइंटिस्ट बनना चाहती है, पायलट बनना चाहती है, रिसर्चर बनना चाहती है, वो कहीं ना कहीं कल्पना चावला जी से प्रेरणा जरूर लेती है। उन्होंने हमें सिखाया स्काई इज नॉट द लिमिट, लिमिट सिर्फ हमारी सोच में होती है। और अगर आपके घर में भी कोई बेटी है, वो सपना देख रही है उड़ने का, तो उसे रोकिए मत, उसे उड़ने दीजिए। क्योंकि क्या पता, शायद अगली कल्पना चावला आप ही के घर से हो। चलिए इसी उड़ान और सपनों की ऊर्जा के साथ सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा मोटिवेशनल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी हाईवे, ओनली ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स।

0: बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी।
1: पगली जीपीएस फॉलो करना, नहीं तो गुम हो जाएगी।
0: अगर गुम हो भी जाओ तो कोई बात नहीं।
1: बिल्कुल, क्योंकि पंछियों के पास भी कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें।
0: हाय, ये है एफएम रेनबो 107.1। यूं ही खट्टी मीठी बातों से जीत लेंगे आपका मन,
1: क्योंकि हम हैं म्यूजिकली यर्स।
2: ओ जी दे लम्बे लम्बे सिल की जय बाल, ओ कुड़ी कौन नच दी, कौन नच दी।
3: अगर हमसे कोई पूछे कि आपने माँ सरस्वती को गाते हुए सुना है, तो हम सभी का एक ही जवाब होगा, हाँ सुना है। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो ओनली ऑन 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स, और मैं हूं आपका रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। जब भी सुरों की बात होती है, जब भी शुद्धता की बात होती है, और जब भी आत्मा को छू लेने वाली आवाज की बात होती है, सभी के सामने एक ही नाम सामने आता है, लता मंगेशकर जी का। लता जी सिर्फ एक महान सिंगर नहीं थी, वो एक एहसास थी, एक आशीर्वाद थी। दशकों तक उनकी आवाज़ हमारी खुशी में, दर्द में, देशभक्ति में और हमारी मोहब्बत में शामिल रही। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां उनकी आवाज़ कभी ना गूंजी हो। उन्होंने हजार नहीं हजारों गाने गाए, और हर एक गाने में एक पवित्रता थी, एक सादगी थी, एक सच्चाई थी। उन्हें यूं ही भारत की स्वर कोकिला नहीं कहा जाता। जब भी वो गाती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे सुर खुद उन्हें चुनते हो। और बिल्कुल हम कह सकते हैं कि लता जी को ईश्वर ने भेजा था कि आप जाइए और दुनिया को बताइए कि सिंगिंग क्या होती है। 6 फरवरी 2022 को लता जी ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन लेजेंड्स कभी नहीं जाते, और लेजेंड्स बहुत छोटा शब्द है लता जी के लिए। लता जी जैसा कोई नहीं, लता जी कहीं नहीं गई है। अपने गानों के जरिए और अपने बहुत प्यारे नेचर के जरिए सदा हमारे दिलों में जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेंगी। लता जी को कोटि कोटि नमन है। और अब आपके लिए दो बैक टू बैक लता जी के दिल छू लेने वाले गाने मैं प्ले कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे कमर्शियल ब्रेक पर। स्टे ट्यून ऑन 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स।

0: हम रेनबो को रंगी बनाएंगे। सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मो स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मो स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: सबके अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज।

0: रहिए 107.1 FM रेनबो
1: म्यूजिकली योर्स।
2: जब एक महिला मैदान में उतरती है तो वो सिर्फ खेलती नहीं, वो पूरी एक पीढ़ी को प्रेरित करती है। आप सुन रहे थे नमस्ते भारत, ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स, एंड दिस इज योर रेडियो मित्र साकेत विद यू। और अब हम बात करेंगे उस शेरनी की जिसने भारतीय महिला क्रिकेट को नया मुकाम दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरमनप्रीत कौर की। सालों से देश इंतजार कर रहा था उस एक पल का जब इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया। 2025 में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में वो सपना सच हुआ और उनकी लीडरशिप में पूरी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, कॉन्फिडेंस और यूनिटी के साथ खेला और आखिरकार वर्ल्ड कप भारत के नाम हुआ। लेकिन ये जीत अचानक नहीं आई, इसके पीछे वर्षों की मेहनत थी और उन वुमेन्स क्रिकेटर्स की मेहनत थी जिन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत योगदान दिया। अंजुम चोपड़ा, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, ऑल दीज ग्रेट वुमेन्स क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट लॉट टू द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट। और भी बहुत सारी हमारी प्लेयर्स हैं जिन्होंने भारत का डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड स्पोर्ट्स में नाम रोशन किया। पीवी सिंधु 2 बार ओलंपिक मेडल लेकर आई, मैरी कॉम 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी एंड

नैना नेहवाल जिन्होंने इंडियन बैडमिंटन को ग्लोबल पहचान दिलाई और आज इंडियन क्रिकेट टीम के एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर जहीर खान का भी बर्थडे है. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू दिस लिविंग लेजेंड. ही कॉन्ट्रीब्यूट लॉट टू द इंडियन क्रिकेट. 2003 से जो इंडियन क्रिकेट ने ग्रोथ पकड़ी है, रफ्तार पकड़ी है, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है. एंड व्हाट एन अमेजिंग बोलिंग स्टैट्स ही हैज. 92 टेस्ट मैचेस, 311 विकेट, 200 ओडीआईज, 282 विकेट. और कौन भूल सकता है मुंबई के वानखेड़े में इनका शानदार वर्ल्ड कप फाइनल का बोलिंग स्पेल, लगातार 3 ओवर मेड इन. क्या बात है. और अब अपने रेडियो मित्र साकेत को दीजिए इजाजत. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए और सुनते रहिए FM Rainbow 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स.

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: ग्यारह बज चुके हैं, आइए एक नजर डालते हैं आकाशवाणी मुंबई द्वारा प्रस्तुत अब तक के प्रमुख समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पामेलिन आज भारत मंडपम में दूसरे भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TIPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर घाना की यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा के दौरान कल भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक क्षेत्र, क्षमता निर्माण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए दो समझौते MOU पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी करते हुए इसे 5.5% कर दिया है। फरवरी 2023 के बाद ये रेपो दर में पहली बढ़ोतरी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण बढ़ते मुद्रा स्फीति दबाव के बीच विशेषज्ञों ने रेपो दर में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई थी। बात अब खेल जगत की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने स्मृति मंदाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान नियुक्त किया है। स्मृति मंदाना इससे पहले 18 T20 अंतर्राष्ट्रीय और 4 एक दिवसीय मैचों में भारत की कप्तानी कर चुकी हैं। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: हाय भाई भाई, आज तो बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक मिली है मुझे। कहता ना, मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन है, और इसी लाइफलाइन में जो हमारी हालत हुई है। वैसे आपका कैसे वेडनेसडे जा रहा है? बुधवार का वार आप पर भारी पड़ा है या नहीं वो तो बताइए मुझे। वेल, मुझे तो बहुत भारी पड़ा है आज। और इसी बीच मुझे एक चीज़ तो समझ आ चुकी है, ट्रेन में जो कहानी आपको मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती। लोग अक्सर वेदर अपडेट चेक करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम ट्रेन अपडेट चेक करने वाले हैं। क्योंकि आप ट्रेन में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास ट्रेन के अपडेट्स होना बहुत ज़रूरी है। सल्यूट होते हैं हमारे लोकल ट्रेन्स के लिए, क्योंकि इतनी भीड़, इतने लोग ट्रैवल करते हैं, मानो कि एक अलग जोश है लोगों में। हाय हाय, ये जोश जो है ना, ये जज्बा, इस पर काफ़ी फिट बैठता है। मुंबई की लाइफलाइन ऐसे ही नहीं लोकल ट्रेन को हम कहते हैं। वेल, इसी बात पर यही फीलिंग आती है, यही बरसा पानी, टिप टिप बरसा पसीना। ये तो हालत है हमारे आज के इस मुंबई के माहौल में, यानी जो गर्मी है उसमें आप अगर लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और मेरी तरह टिप टिप पसीनों के साथ आप स्टूडियो में आए हैं या अपने काम पर जा रहे हैं, तो डरिए मत। आपके लिए हमारे पास काफी अच्छा सोल्यूशन है। नहीं नहीं, एसी या हवा नहीं, लेकिन हाँ, बहुत ही मजेदार गाने लेकर आई हूं। उसके साथ आपको और

0: क्यों, पैर थिरकने लगे या नहीं?
1: वेल, आपके पैर अभी थिरकने के लिए मजबूर कर ही दूंगी मैं।
0: क्या है कि आज की लिस्ट बस वैसी ही है, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए, 11 तारीख करीब है यानी नवरात्रि, तो नवरात्रि के हाल चाल क्या है आपके? शॉपिंग हो गई?
1: वैसे ड्यूटी कब की है?
0: जी मेरी मम्मी ने तो मुझे 2 दिन बाद की ड्यूटी दी है, साफ सफाई की।
1: आपकी ड्यूटी कब है?
0: वैसे नवरात्रि के बाद दिवाली भी आ रही है, तो प्रिपरेशन करके रखिएगा।
1: वेल, इसके साथ साथ गरबा के स्टेप्स भी आपको याद करने हैं।
0: जब इतना सारा काम है तो बॉडी को थोड़ा वार्म अप तो करना पड़ेगा। इसी वार्म अप के लिए मैंने सोचा क्यों ना आज आपको ब्रेक फ्री में ब्रेक डांस सिखाते हैं। यानी कि ये प्लेलिस्ट जो आप सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं आगे, बहुत सारे गाने, उनमें आपकी बॉडी को अच्छी खासी वार्म अप मिल ही जाएगी। अब क्यों बार बार ब्रेक फ्री में मैं आपको बोलूं कि बेड़ियां तोड़िए, आजाद हो जाइए? मैं तो कहती हूं पैरों में वेट्स बांध कर वर्कआउट कीजिए, नजरिए की बात है। जो आपका वेट लॉस होगा उसके बाद जो गर्भा में आप यूं छलांगे मार के 360 डिग्री डांस करने वाले, वीडियो मुझे भेजेगा वैसे व्हाट्सएप करके। व्हाट्सएप नंबर हमारा 8657661071। आपके पास अगर नहीं है तो सेव कर लीजिए और मुझे मैसेज कीजिए कि आप कहाँ से सुन रहे हैं। वैसे मेरी टिकट तो मैं सोच रही हूँ झारखंड की कटवा ही लूँ, क्योंकि मुझे अभी अभी बड़ा ही जेलस वाला मैसेज आया है, यानी कि हजारीबाग झारखंड में ठंडी और बारिश हो रही है। सच है ये? वैसे रंजन जी ने मैसेज किया है मुझे। अगर ये बात है तो अभी के अभी टिकट कटवाइए हमारी, हम जाना चाहते हैं। वेल, इसके अलावा अगला गाना आप सुनने वाले हैं गीता दत्त की आवाज में, और एक चीज इस गाने से बहुत अच्छे से हमें पता चल सकती है, आपको नाम याद रखने के लिए बादाम की जरूरत नहीं है। ये गाना आपको बखूबी याद दिला सकता है कि आपका नाम क्या है, यानी कि मेरा नाम

0: टिंचिन चू तो नहीं है, लेकिन हाँ गीता दत्त की आवाज में ये अगला गाना छोटे से ब्रेक के बाद। Only on FM Rainbow 107.1 because we are musically yours.
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
2: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
1: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध, कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि,
2: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध। सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
2: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
1: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध, कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि,
2: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

धोखा तो है जब आपसे एक रूम कहकर पूरे घर की सफाई कराई जाए, तो धोखा तो है। वेल 11:24 ऑन द क्लॉक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स विथ मी आरजे भावना। वेल इस चीज पर मुझे याद आता है, मैं अक्सर आपसे अपना इंट्रोडक्शन कराना भूल जाती हूँ, पर कोई बात नहीं, गीता दत्त की तरह हम गाने की तरह आपको याद दिलाते रहेंगे, या फिर खैर बादाम ही खाने पड़ेंगे। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग्स टुडे, आज हम गाने जो प्ले कर रहे हैं ये उस चीज के लिए है क्योंकि आज बुधवार है, यानी कि सोमवार अब तक गया नहीं दिमाग से, रविवार अब तक आया नहीं, बीच में हम मझधार में फंसे हुए हैं, लेकिन

खुशी तो इस बात की भी है कि 11 तारीख को नवरात्रि आने वाला है, तो गरबा की जो धूम मचने वाली है, मन के अंदर जो डांडिया हमारा चल रहा है, विद दैट आपको बता दूं, आज आपको मैं ब्रेक दे रही हूं, यानी बॉस जो आपके सर पर नाचते हैं उनके सामने आप नाचना शुरू कर दीजिए, ये बहुत अच्छा ब्रेक है। वो भी कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर इन्हें हुआ क्या है, लेकिन गरबा जो है वो ऐसी चीज है जहां एक बार आपने शुरू कर दिया तो आपको ज्वाइन करने के लिए एक मंडली बन ही जाती है, वाइब ही ऐसी है। वेल विद दैट आपको अगला गाना सुनाने वाली हूं आशा भोसले की आवाज में, झुमका गिरा रे। आय हाय, हमारी लाइफ में तो कभी झुमका गिरता ही नहीं कि कोई ढूंढ के ला दे, बट ठीक है, यहाँ पर ये गाना काफ़ी मज़ेदार है, इसमें आपको मेन कैरेक्टर एनर्जी तो पक्का मिलने वाली है। आशा भोसले की आवाज़ में ये अगला गाना फ्रॉम द फिल्म मेरा साया।

0: अपनी पसंद की कोई भी कार ले, कॉस्मोस कार लोन है ना।
1: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
0: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
1: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

ऐसे ही थोड़ी ना हम कहते हैं कि एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं। इन गानों का कमाल ही ऐसा है कि इन्हें सुनते ही आप गुनगुनाने लगते हैं और कुछ तो नाचने लगते हैं। ऐसे ही जब मैं आ रही थी स्टूडियो में, हमारी डियो साहिबा जैसे ही रेट्रो गाना बजा, गुनगुनाने लग गई। अय हय हय, एक कमाल की बात है ना। कुछ गाने हैं जो आपको इस तरह बेचैन करते हैं, अच्छे वाले बेचैनी, जहाँ पर आपको कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है कि आप कहाँ हैं उस वक्त, कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा, आपके होठ अपने आप हिलने लगते हैं, उन गानों के साथ झूमने लगते हैं आप, और आपको पता भी नहीं होता। वो तो जब किसी और की नज़र आप पर पड़ती है और अजीब तरीके से वो आपको सोचते हैं कि आखिर ये झूम क्यों रहे हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपके कानों में ईयरफोन्स हैं और आपको पता ही नहीं कि आप कब नाचने लग गए। कुछ ऐसा ही असर होता है इन गानों का। आकाशवाणी एफएम रेनबो 11:38 ऑन द क्लॉक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 विद मी आरजे भावना, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स। और आज के गाने आपको याद दिलाने के लिए हैं कि वर्कआउट शुरू कर दीजिए, गरबा खेलना है 9 के 9 दिन वो भी। वैसे आज के इस प्लेलिस्ट से एक और चीज आपको याद दिला दूं, आपको मुझे जवाब देना है जी एंड ऑफ द शो, यानी शो खत्म होने से पहले आपको बताना है आखिर हमारा ये सेगमेंट क्यों स्पेशल है आज। सोचिए, अक्सर तो मैं आपको बताती हूँ कि आज हम ये करने वाले हैं, आज ये सेगमेंट होगा, ये हम बात करेंगे, इस बारे में बात करेंगे। आज एक खास पैटर्न है, देखते हैं कि आप अपने टोपी और चश्मे के साथ, बाइनोक्यूलर्स के साथ कितने अच्छे डिटेक्टिव बन सकते हैं। विद दैट, आखिर में आपसे कुछ दिल की बात भी कहनी है, वो सुनने के लिए आपको हमें सुनते रहना पड़ेगा, हमें यानी मैं, आप, हम सब जो जुड़े हमारे साथ। वैसे अंजू जी कहती हैं हमें कि झुमका कनाडा में ही घूम गया, अब तक नया लिया नहीं है। वेल, आपके पास कलेक्शन कितनी है झुमकों की, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियों के पास झुमके हो, यकीन मानिए किसी लड़के के खास सीक्रेट बॉक्स में कोई झुमका छुपा है, शायद कहीं छूटा गिरा हुआ तो कभी बहुत ही संजो के रखा हुआ। वेल, इसी बात पर एक और चीज मुझे याद आई है, अगला गाना जो है कुछ ऐसे ही इशारों के ऊपर है, कुछ ऐसे ही दबी दबी फीलिंग्स के ऊपर। वेल, इस गाने के साथ अगर इशारा कोई समझ जाए तो बढ़िया। क्या होता है कि गरबा में अक्सर हमारी नजरें मिलती हैं और वो फिर बात आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन हाँ, वो एहसास हम साथ लेकर जाते हैं। तो बस उसी एहसास के नाम ही अगला गाना। अब हम रुक करते हैं 70s से 80s की तरफ, क्योंकि एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, और 80s की एनर्जी तो अलग ही जुनून था।

गुलू गुलू।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

11:45 on the clock. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 with me RJ भावना because we are musically yours. और आज के तरानों के साथ साथ आपके messages जो हैं वो काफी प्यारे हैं. आप लोग कितने cute हो यार, कसम से. मतलब पहले मुझे मैसेज आ रहा है कि कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनाइए. अंकित जी देखिए, मोटिवेशन है ना इस गाने में कि मेन कैरेक्टर एनर्जी. जैसे ये कह रही है कि जो मुझे देखकर किसी और को ना देखे उसकी बनूंगी मैं लैला, यानी कि आपके अलावा किसी और की तरफ नजर जानी ही नहीं चाहिए. नजरिए की बात है, देखिए मेन कैरेक्टर एनर्जी फील कीजिए. और वहीं पर यशवंत जी कह रहे हैं, ये तो बड़ा ही प्यारा क्यूट सा मैसेज है कि नमस्कार, 1 बजे के बाद फोन लगाने में जो कसरत हो रही है, कसरत आप गानों पर कीजिए यशवंत जी. वैसे आपको बता दूं, अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, नए नए हमारे साथ लिसनर बने हैं, तो हमारी महफिल जमती है जहां पर रिक्वेस्ट आर में हमारा एक रूल है कि आपके मैसेजेस पढ़े नहीं जाएंगे. जी हाँ, व्हाट्सएप हमारा बंद हो जाता है. वो इसलिए क्योंकि हमारी फोन लाइन शुरू होती है, तो आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है. वही पुराने वक्त की तरह वो बेताबी, वो बेचैनी कि अब हमारा कॉल लग जाए शायद. और फिर जब कॉल लग जाता है, आय हाय हाय, वो खुशी का एहसास आपको तब होगा जब आप कोशिश करेंगे. यकीन मानिए, आप जिस तरह हमें सुनते हैं वैसी ही बेचैनी मुझे आपको सुनने में है. आखिर हम भी तो जाने कि आपकी आवाज कैसी है, कितनी मीठी आवाज है. इस चेहरे के पीछे की आवाज आप सब सुन रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज मुझे सुननी है. इसलिए रिक्वेस्ट आर में रिक्वेस्ट उनकी पूरी होगी जो हमें कॉल करते हैं. ये तो हुई रिक्वेस्ट आर की बात, लेकिन इससे पहले कन्फेशन टाइम भी है. भूल गए? वेल, बताऊंगी मैं आपको अपने दिल की भी बात, लेकिन उसके पहले, उससे पहले अंजू जी हमसे और भी गुफ्तगू कर रही हैं. और सिर्फ अंजू जी नहीं, बल्कि दीपा जी भी कह रही हैं कि हम तो बहुत ही मज़े में काम करते हैं, अपने घर की सफाई दिवाली से पहले ही हो जाती है हमारी. और दिवाली क्या, नवरात्रि के पहले हम सब घर के कोने कोने चमका देते हैं. इसीलिए तो मैं आई हूँ, ताकि आपकी सफाई में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक दे सकूँ. सोचिए जरा, लैला और लैला इस गाने के साथ आप घर की सफाई कर रहे हैं, आय हाय हाय, क्या मजा आता है. और इसी बात पर आपको अगला गाना सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि आपके प्लान्स क्या है नवरात्रि के. 11 तारीख से शुरू हो रही है नवरात्रि, और आज के हमारे सेगमेंट की खास बात ये भी तो आपको बतानी है. इसी बात पर मैं फिर भूल गई. मैं हूँ आरजे भावना और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो. विद दैट आप सुनेंगे अगला गाना प्यारा दुश्मन फिल्म से, ऑफ कोर्स 80s के तराने.

वेल प्लान चेंज हमारे इस रेनबो पर ट्विस्ट की कमी नहीं होती, लेकिन हम चीज़ों को ट्विस्ट नहीं करते, हम बातों को ट्विस्ट नहीं करते, हम अपनी कमर ट्विस्ट करते हैं। क्योंकि अगला गाना अब आप सुनेंगे उषा अय्यर और आशा भोसले की आवाज़ में फ्रॉम द फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा। अब थोड़ा भक्ति भजन की ओर जाते हैं और प्रभु का नाम लेंगे, लेकिन जोश बिल्कुल कम नहीं होगा।

वेल 11:52 ऑन द क्लॉक, और सबसे कमाल की बात ये है कि अच्छा लग रहा है जब आप लोग यूं जासूस की तरह कोशिश कर रहे हैं पता करने की कि आखिर हमारा सेगमेंट क्या है। प्रणव शिंदे काफ़ी करीब आ चुके हैं, लगभग इतनी कोशिशों के बाद जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो आपके गेसेस हैं, सिर्फ प्रकाश या प्रणव शिंदे नहीं बल्कि रंजन जी भी कोशिश कर रहे हैं, विजेंद्र घाटोल जी कोशिश कर रहे हैं, पंकज माहौर जी कोशिश कर रहे हैं, आप सभी की कोशिशें दिख रही है मुझे, लेकिन आप लोग अभी भी दूर हैं। ज़रा और सोचिए और जोर डालिए दिमाग पर कि आखिर ये सेगमेंट स्पेशल किस तरीके से है। जी हाँ, नवरात्रि, प्रणव शिंदे जी ने कहा है कि नवरात्रि के आसपास, दैट्स राइट, क्योंकि ऑफ कोर्स नवरात्रि आने वाली है तो उसकी प्रिपरेशन हम पहले से ही करने वाले हैं। भाई कितना कुछ है, शॉपिंग करनी है, कपड़े देखने हैं, उसे कोऑर्डिनेट, कलर कोऑर्डिनेट करना है, फिर दोस्तों को तैयार करना है, उसमें कुछ दोस्त होंगे जो थोड़े नखरे करेंगे, उसके बाद कुछ होंगे जो साथ आएंगे लेकिन कहेंगे नहीं नहीं हमें डांस नहीं करना, लेकिन कुछ देर बाद वही दोस्त वहां से बैठे बैठे चुपचाप गरबा ज्वाइन कर लेते हैं, फिर कुछ दोस्त होते हैं जो स्नैक्स काउंटर पे मिलते हैं। तो ये आपकी भी पलटन में है क्या ऐसे दोस्त? वेल, आप जब तक मुझे बताएंगे मैसेज करके व्हाट्सएप पे हमारे जो कि है 8657661071 पर, तब तक आपके लिए अगला गाना ये कुर्बानी फिल्म से नाजिया हुसैन की आवाज़ में, जहाँ पर आप जैसा कोई, यानी कि आपके दोस्त जैसा कोई है आपके लाइफ में जो ऐसी हरकतें करता है कि लाख मनाओ, जाना तो उसे है पर उसे लाख मनाना पड़ता है बार बार कि आ जाओ भाई आ जाओ, तब जाके वो मानते हैं। वेल, अगर कोई है ऐसा तो बताना जरूर, उनके लिए अगला गाना कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बहुत बहुत मेहनत लग जाए। वेल, नेक्स्ट सॉन्ग कुर्बानी फिल्म से नाजिया हुसैन की आवाज में।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: 12 बज चुके हैं, आइए एक नजर डालते हैं आकाशवाणी मुंबई द्वारा प्रस्तुत तब तक के प्रमुख समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने ईश्वर से उन्हें और अधिक शक्ति और ऊर्जा देने की प्रार्थना की ताकि वे पूरी निष्ठा के साथ दिन रात देश और जनता की सेवा करते रहें। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर का अनुमान 0.4% बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने आगाह किया कि वैश्विक स्तर पर बने भू राजनीतिक तनाव से आर्थिक परिदृश्य के लिए जोखिम कायम है। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अक्टूबर की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए ये जानकारी दी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने लद्दाख के न्योमा में उन्नत हाई अल्टीट्यूड पैराशूट प्रणाली का पहला लाइव जंप सफलतापूर्वक कराया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह जंप समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया। बात अब खेल जगत की। आज विश्व कपास दिवस है, माफ कीजिएगा, ये बात अब कपास दिवस के बारे में है। आज विश्व कपास दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य कपास के वैश्विक आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व को उजागर करना है। इस वर्ष का विषय है खुशहाली के लिए कपास, व्यापार, बदलाव और साझेदारी के माध्यम समृद्धि का निर्माण। केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने वीडियो संदेश में कपास क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार।

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: 12:03 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 विद मी आरजे भावना और हमारा दूसरा सेगमेंट यानी म्यूजिक कैफे शुरू हो चला है और आपको गेस करना है कि आखिर हमारा ये सेगमेंट ब्रेक फ्री ऑफ म्यूजिक कैफे किस बारे में है। पहला हिंट नवरात्रि, जो आपने खुद गेस किया कि हम नवरात्रि के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन चलिए एक और हिंट देती हूँ। जरा गौर फरमाइएगा कि अब तक जो आपने गाने सुने हैं इनमें ही हिंट है, इन गानों को गौर से सुनिएगा। वेल, इसके अलावा आपसे कुछ दिल की बातें भी करनी है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और अगर अभी अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं, यानी कि आपकी मेरी मुलाकात ये पहली पहली बार है, तो इस पहली मुलाकात की आगाज को आप शुरुआत दे दीजिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं चलेगा आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं। तो मैसेज कीजिए 8657661071, यानी 8657661071, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बस हाय भेज दीजिए और कहाँ से हमें सुन रहे हैं ये बता दीजिए। विद दैट आपको अगला गाना सुनाने वाली हूँ, क्योंकि अब क्या है, दिन भर की भाग दौड़ में हम सब लगे हुए हैं, कोई दफ्तर में, ऑफिस के बाद फिर आप जाएंगे शॉपिंग के लिए, उसके बाद घर की साफ सफाई, ये पूरी रफ्तार जो है ना कहीं सांस लेने के लिए हमें मजबूर कर देती है। और वैसे भी अब तक थक चुके होंगे, इतना जो आपने डांस कर लिया है इन गानों के ऊपर, अब आपको थोड़ा ब्रेक देते हैं,

से कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही क्यूट है. वेल, आपको एक और हिंट दे देती हूँ. इस बार हमारा सेगमेंट थोड़ा सा चेंज हो रहा है. ब्रेक फ्री में एक स्पेशल सेगमेंट तो था ही, अब हम इसमें थोड़ा बदलाव कर रहे हैं. गैस कर पाए? क्या कहते हो, बता दूँ आपको जवाब? बता दूँ? तो चलिए, नवरात्रि की बात हो रही है, हम देवी माँ की बात करते हैं. तो हमारे सेगमेंट में अगर आपने गौर किया होगा तो ब्रेक फ्री में हमने ज़्यादातर जो सरस्वती माँ हैं, जी हाँ, हमने फीमेल आर्टिस्ट, फीमेल सिंगर्स के गाने बजाए. और म्यूजिक कैफे में भी हम वही करने वाले हैं, बट जो हम करते हैं ना हमेशा मेल फीमेल और ये ग्रुप में बांट देते हैं, आई थिंक इन दोनों का साथ में चलना, एक अनोखा मिश्रण जो है ना, वो प्यार अलग होता है. तो अब कॉम्बिनेशन तो होगा, लेकिन हाँ, कोई सोलो नहीं होने वाली परफॉर्मेंस. यानी कि आप जो गाने सुनने वाले हैं वो गाने ड्यूएट होने वाले हैं. एंड ऑफ कोर्स उन गानों में दोनों ही सिंगर्स बहुत ही कमाल के होने वाले हैं. विद दैट, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, वो भी आपको बता दूं. मोंटी जम्मू से हमें सुन रहे हैं, मुकेश वालिया देहरादून से, राजेंद्र परमार, शुभदा जी, सुरेश वैष्णव, आयुब टेलर, एंड काफ़ी नए नाम दिख रहे हैं. वाह वाह, क्या बात है. मतलब आपको पहले मुझे बताना पड़ता है ना कि आप मुझे मैसेज कीजिए, तब आप मैसेज करेंगे. ये कौन सी बात है यार, आप पहले ही मैसेज कर दो. मैं आपके मैसेजेस पढ़ रही हूँ, भले आपके नाम ना लूँ, लेकिन आपको मैं ऐसे ही पहचानने वाली हूँ. यही तो खास बात है हमारे रिश्ते की. विजेंद्र घाटो लकोला से, एंड ललिता, ललिता है अहमदाबाद गुजरात से, अंजू अंधेरी ईस्ट से, डॉक्टर अंजू, एंड राजेंद्र परमार जी, अशोक पाटिल वराली से, पंकज मोहर, संजय दर्शन. एक्सेंट क्यों आ रहा है वैसे? लगता है अंजू जी आप कनाडा जाकर आई हैं, झुमका आपका वहाँ गिरा है, लेकिन मेरा दिल ऑलरेडी चला गया है. ऊपर से शुभदा जी हमें कह रही हैं कि आप दिवाली में हमारे साथ बाहर चलिए घूमने. वेल, देखते हैं. गर्मी से ठंडी मौसम की तरफ हमारी प्लेलिस्ट. जी नहीं रंजन जी, आपका गैस अभी भी गलत है, मैंने बता दिया है जवाब वैसे. रजनीकांत पाटिल वाधवन जी, प्रणव शिंदे, धनंजय न्यू मुंबई से, राकेश माथुर, प्रमोद चिंचोलकर, यशवंत आठमुड़े जी, दीपा पालकर, मुकुंद कुलकर्णी पूना से, अजय साखरे इंदौर से, फिरोज सिकनपुरिया, शुभलक्ष्मी मस्तकर, अंकित, सुरेश, काशीनाथ पाटिल, विश्व, अविनाश दामोदर कड़ू, वैदे ही हमें सुन रही हैं फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, 11 बजे से हमारे साथ बने हुए हैं आप सब. वेल, मज़ा आ रहा है या नहीं वो बताइए. ब्रेक फ्री हुआ है या नहीं आपका दिल थिरकने के बाद? अब थोड़े सुकून वाले गाने आपको सुनाने वाली हूँ, लव सॉन्ग्स, जहाँ पर इन सभी फेस्टिवल्स में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, प्यार थोड़ा और बढ़ जाता है. कुछ नई लव स्टोरीज मिलती हैं तो कुछ पुराने रिश्तों में नए रंग आने लगते हैं. जैसे कभी नवरात्रि के लिए तैयार हो रहे हो और सडनली आपकी तारीफ आपके पार्टनर ने कर दिया है. क्या जच रहे हो, कितनी सुंदर दिख रही हो, झुमके बड़े प्यारे लग रहे हैं. यही तो है, त्योहारों में जिस तरह हम तैयार होते हैं, कहीं ना कहीं हर एक रंग जो है, जो कभी ना कभी हमें धुंधला सा लगता है, वो नया लगने लग जाता है. ये कमाल है त्योहारों का. वेल, अगला गाना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में, फ्रॉम द फिल्म परिणीता.

0: कुछ ज्यादा ही शर्मा गए, कोई बात नहीं।
1: 12:10 ऑन द क्लॉक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 विद मी आरजे भावना। और आप सभी के मैसेजेस जो हैं, बहुत प्यारे मैसेजेस हैं, पढ़ के मजा आ रहा है। इनफैक्ट मुझे आप जिस तरह

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट

बस बोलने की ही तो बात है, वही तो नहीं कह पाते जब दिल में बहुत सारी बातें हो और कुछ बोल ही ना पाए। ये कभी महसूस किया है आपने? जी होता है बहुत बार, जब आपको कोई पसंद होता है और आप कितनी भी बातें करें लेकिन उनके सामने आप बहुत खामोश हो जाते हैं, हर चीज़ नाप तोल कर कहते हैं कि हाय

कहीं ये ना बात निकल जाए, कहीं कुछ ऐसी बात ना कर दे कि हमारे बारे में कुछ और सोचने लग जाए। और फिर जब आप घर पहुंचते हैं उनसे मिलने के बाद, तब आपको रियलाइज़ होता है, काश ये बोल दिया होता, काश ये कह दिया होता, काश ये कह दिया होता। हाय, ये पहले प्यार की यही तो छोटी छोटी हरकतें हैं जो याद बन जाती है। वैसे आपकी पहली मुलाकात कैसी थी? आपका भी तो पहला क्रश, पहला प्यार, पहली मुलाकात हुई होगी। आई नो आप सबके पास बहुत सारे किस्से हैं, बस पिटारे में बंद है। उस पिटारे को खोलिए और बताइए मुझे आपकी पहली मुलाकात की कहानी। आप लोगों के प्यार भरे स्टोरीज के ज़रिए ही तो समझ पाती हूँ कि आखिर प्यार का एहसास है कैसा। मैसेज कीजिए 8657661071 पर और बताइए आपकी पहले प्यार, पहले क्रश, पहली मीटिंग की यादें। और इसी के साथ अगला गाना आप सुनेंगे उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में। ऑफकोर्स पहले पहले प्यार की बात हो रही है तो पहला खुमार, पहला नशा, इसकी भी बात होगी। और एक चीज़, ठीक 12:30 पर आप सुनेंगे हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। सो बने रहिए एंड सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 विथ मी आरजी भावना। देखिए प्यार की बात ही कितनी अजीब है, मेरे मुझे लगता है कि रोम रोम में मेरे बस वो फीलिंग जाग उठी है। वेल, आपकी कहानियों का इंतज़ार रहेगा और कहानियों के साथ ये गाने आपके बैकग्राउंड स्कोर के लिए काफ़ी फिट बैठने वाले हैं। सुनते रहिए एंड मुस्कराते रहिए और प्यार करते रहिए।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी जी ने। लिखते हैं,
2: ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान उससे सबक लेकर संभल जाए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है साहू पारा सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू और दुलीचंद साहू जी का। वो लिखते हैं,
1: प्रिय उद्घोषक जी मन ला जय जोहार पहुंचे, आपके उमंग NCERT कार्यक्रम ला ध्यान लगा के सुनथन, बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी।
1: और छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू के साथ साथ शिवम साहू लिखते हैं, सादर नमस्कार,
2: मैं उमंग कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें मनोरंजन तो होता ही है और हमें ज्ञान और सीख व प्रेरणा भी मिलती है। और सफल प्रस्तुति के लिए उमंग परिवार और अजीत जी और विमलेश जी को हार्दिक बधाई।
1: अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर संतोष कायंदे, डॉक्टर अशोक इंगले, डॉक्टर संतोष वावगे और श्री संजय देशमुख लिखते हैं,
2: CIET द्वारा प्रस्तुत उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है
1: जी।
2: कल उमंग कार्यक्रम में दृढ़ संकल्प की धनी अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानकारी दी गई, जो हमें बहुत अच्छी लगी। हम लोग अकोट जिला अकोला में स्थित श्री शिवाजी महाविद्यालय में अध्यापक हैं। महाविद्यालय में जाने के लिए हर दिन हमें 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। उमंग कार्यक्रम में दी जाने वाली रोचक जानकारी से हमारी हर दिन की यात्रा बहुत सुखद और आनंददायी बन जाती है।
1: आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम से न केवल हमारी यात्रा सुखद बनती है बल्कि उससे हमारा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया भी बहुत प्रभावी बन जाती है। उमंग कार्यक्रम हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी, अजीत जी, विमलेश जी और पूरी उमंग टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
1: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार की
2: जी।
1: आज हम आपको एशिया के एक ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो विमलेश जी, जरा श्रोताओं को ये तो बताइए कि आज हम किस पुरस्कार की बात करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार की।
1: बिल्कुल सही,
2: लेकिन इस पुरस्कार के पीछे की कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा फिलीपींस के इतिहास में। तो आइए श्रोताओं, शुरू करते हैं
1: मैग्सेसे पुरस्कार की कहानी। तो विमलेश जी, पहला प्रश्न तो ये है कि इस पुरस्कार का नाम मैग्सेसे पुरस्कार क्यों पड़ा?
2: अजीत जी, सचमुच ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल रेमोन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 31 अगस्त 1907 को फिलीपींस में हुआ था। वे अपने सरल जीवन, जनता से जुड़ाव और सार्वजनिक सेवा के लिए जाने जाते थे और जनता में बहुत लोकप्रिय थे
1: जी। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शासन में ईमानदारी और आम लोगों की समस्याओं पर बहुत ध्यान दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि उनके नाम पर पुरस्कार शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। इसके पीछे एक दुखद घटना है। 17 मार्च 1957 को एक विमान दुर्घटना में राष्ट्रपति रेमोन मैग्सेसे की मृत्यु हो गई। बहुत कम उम्र में उनका जीवन समाप्त हो गया।
1: और श्रोताओं, उनकी स्मृति को जीवित रखने और एशिया में ऐसे लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1957 में रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई। पहला पुरस्कार समारोह 1958 में हुआ, लेकिन विमलेश जी, श्रोताओं को हम ये भी बताना

0: चाहेंगे जरूर कि यह पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है।
1: अजीत जी, ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने एशिया में समाज और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो, जैसे
0: सामाजिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, कला, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले लोगों को भी यह सम्मान मिल सकता है।
1: जी।
0: भारत के कई उल्लेखनीय व्यक्तियों और संस्थाओं को भी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है।
1: मुझे लगता है इस पुरस्कार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमें बताता है समाज में बदलाव केवल बड़े बड़े नामी लोगों से नहीं आता।
0: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी गाँव में काम करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने वाला शिक्षक, कोई सकारात्मक पत्रकार या सामुदायिक हित के लिए लगातार काम करने वाला व्यक्ति भी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
1: यानी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की मूल भावना है निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी।
0: जी बिल्कुल, ये पुरस्कार हमें याद दिलाता है कि किसी भी काम की महानता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसे कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि इस बात से होती है कि उससे कितने लोगों के जीवनों में सकारात्मक परिवर्तन आया।
1: तो अजीत जी, अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्या हमें किसी बड़े अवसर का इंतजार करना चाहिए?
0: बिल्कुल नहीं विमलेश जी, बिल्कुल नहीं। शुरुआत अपने आसपास से ही की जा सकती है।
1: एक बच्चा पढ़ाना,
0: दूसरी बात किसी जरूरतमंद की मदद करना,
1: पर्यावरण की रक्षा करना,
0: ईमानदारी से अपना काम करना
1: और समाज में सकारात्मक सोच फैलाना,
0: ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
1: जी तो श्रोताओ, आज की कहानी हमें एक सुंदर संदेश देती है कि
0: सम्मान पाने के लिए महान काम मत कीजिए, महान काम इसलिए कीजिए क्योंकि उससे किसी का जीवन बेहतर हो सकता है।
1: और शायद यही रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है।
0: आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
1: जी।
0: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम है अपना अपना काम।
1: NCERT की तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि हम सबका अपने परिवार और समाज में एक विशेष उत्तरदायित्व और कार्य है, उसे हमें पूरे समर्पण के साथ निभाते हुए कार्य करना चाहिए।

0: बैठी स्कूल का काम कर रही थी।
1: अंकल चलती जाती चीटी, शम का राग सुनाती चीटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चीटी। ये हो गया मेरा स्कूल का काम। ओहो मैं तो थक गई।
0: वो सोचने लगी,
1: इतना सारा लिखने पढ़ने का काम, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो, कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता।
0: पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं।
1: मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ।
0: भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियां रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली,

0: दुखी हो? तुम क्यों हमारे जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो?
1: मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ।
0: इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं और
2: सिमरन ने कान बंद कर लिए।
1: सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी।
2: फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़।
1: हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता।
2: पेड़ हंसने लगा।
3: मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूं। बस सुनो, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं।
2: सिमरन ने आंखें झुका ली।
1: सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। लेकिन इस चिड़ियों की मौज है।
2: सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा,
1: हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था।
4: नाना, ये क्या सोच रही हो? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और तो और,
1: बस बस, मैं समझ गई।
2: वो सोचने लगी,
1: परिश्रम से ही सब जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए।
2: उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई।
1: सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी।
5: तो बच्चों, सुना आपने? मधुमक्खी, चिड़िया, पेड़, चींटी सभी अपना अपना काम करते हैं। जरा सोचिए कि हमारा अपना काम पढ़ाई के अलावा और भला क्या क्या हो सकता है? अपना काम हो सकता है जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, स्कूल से आकर बस्ता सही जगह पर रखना, और हाँ, माता पिता की जहां तक हो सके मदद करना। है ना ये हमारा अपना काम? तो आइए, जब सब करते हैं अपना अपना काम, तो क्यों ना हम सब भी करें अपना अपना काम।
6: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं भारत के प्रथम इंजीनियर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम।
1: भारत ने सभी क्षेत्रों में एक से एक विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म दिया है। इन प्रतिभाओं का अमूल्य योगदान पूरी मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।
2: ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। वो एक अद्भुत प्रतिभा वाले विलक्षण अभियंता और युग दृष्टा थे। उनका जन्म कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर कस्बे में 15 सितंबर 1860 को हुआ था।
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को मनाया जाता है। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकचम्मा था। उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्ष गुंडम से यहाँ आकर बस गए थे, इसलिए मोक्ष गुंडम उनके पारिवारिक नाम में जोड़ा जाने लगा।
2: जब बालक विश्वेश्वरैया मात्र 12 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान पर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में हुई। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट ऐसा रहा कि उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ता था।
1: उन्होंने कठोर परिश्रम किया और परिस्थितियों से संघर्ष किया और आखिर आ ही गया वर्ष 1881, जब उन्होंने पूरे मैसूर राज्य में विज्ञान स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
2: बहुत अच्छा काम। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की सभा श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में बुलाई गई है, जिन्होंने पूरे मैसूर राज्य में प्रथम श्रेणी में सबसे अधिक अंक लाकर विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की है। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें।
3: भाई वाह, कमाल कर दिया।
2: साथियों, इतना ही नहीं, आज ही विश्वविद्यालय में मैसूर राज्य के दीवान का संदेश आया है कि श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की आगे की पढ़ाई और बाकी पूरा खर्च मैसूर सरकार ही वहन करेगी।
1: पूना के साइंस कॉलेज से उन्होंने सन 1883 में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और महाराष्ट्र सरकार के नासिक लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। भवन निर्माण, जल और नगर प्रबंधन जैसे कार्यों में उनका सानी नहीं था।
2: उन दिनों भारत आजाद नहीं हुआ था। हुआ ये कि सक्कर में पानी की भारी समस्या खड़ी हो गई। बता दें कि सक्कर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ सिंध प्रांत का एक नगर है, इसे सुकूर भी कहते हैं। समस्या के निदान के लिए विश्वेश्वरैया जी को विशेष सलाहकार के रूप में ब्रिटिश सरकार के मुख्य अभियंता द्वारा सक्कर बुलाया गया।
4: फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आज की खास बैठक सक्कर नगर पालिका में पानी की समस्या पर बात करने के लिए बुलाई गई है। हमें इसका समाधान खोजना है।
5: जी सर, इन दिनों अखबारों में भी इसके बारे में बहुत छप रहा है और जनता बहुत परेशान है सर।
4: ये एक सीरियस बात है। हमें खुशी है कि हमारी खास गुजारिश पर आज हमारे बीच मिस्टर मोक्ष गुंडम मौजूद हैं। आपने बहुत सी जगहों पर बहुत उम्दा काम किया है। मिस्टर मोक्ष गुंडम

0: हम आपके विचार जानना चाहते हैं।
1: धन्यवाद सर। हमें नदी के आसपास हर 500 मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे खोदने होंगे ताकि बाढ़ के समय सिंधु नदी का पानी इन गड्ढों में भर जाए और वर्षा के जल का भंडारण हो सके। हमने बहुत से स्थानों पर इस तरीके को अपनाया है सर।
2: आप कहना चाहते हैं कि ऐसा करने से बाढ़ का पानी गड्ढों में भर जाएगा? इससे बाढ़ का पानी शहर में भी नहीं जाएगा और पानी जमा भी हो जाएगा, है ना?
1: जी सर। और इसके अलावा हमें शहर की सभी ऊंची जगहों पर बड़ी बड़ी टंकियां बनानी होंगी।
2: क्यों?
1: ताकि वहां भी वर्षा का जल जमा किया जा सके।
2: हो।
1: और हाँ सर, ऊंटों द्वारा टंकियों तक जल पहुंचाया जा सकता है।
0: यू मीन वॉटर हार्वेस्टिंग। बहुत अच्छा विचार है आपका। मैं आपके डिपार्टमेंट को आज ही लेटर लिखता हूँ कि आपका तबादला कुछ समय के लिए शक्कर में कर दिया जाए।
1: थैंक यू सर। मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी सर।
0: ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम।
1: थैंक यू।
3: साथियों, विश्वेश्वरैया के इस सुझाव का परिणाम बहुत ही प्रभावी रहा। बाढ़ की समस्या से भी छुटकारा मिला और शक्कर जैसे शुष्क प्रदेश में जल की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई। ये परियोजना देश के बहुत से जल संकट का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए उदाहरण बन गई। इस समय उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। लोक निर्माण विभाग में रहकर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी ने कोल्हापुर, बेलगाम, धारवाड़, बीजापुर, अहमदाबाद और पूना समेत कई शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं पर खूब काम किया था।
4: अब तक उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई थी। उन्हें मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त कर दिया गया और साथ साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक संभाग का रेलवे सचिव भी। एक बार उनके साथ बड़ी रोचक घटना हुई। वो ट्रेन से लोक निर्माण विभाग के किसी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने जा रहे थे। ट्रेन में कई अंग्रेज भी थे।
3: सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे और ट्रेन तेज गति से चल रही थी। अचानक मोक्ष गुंडम उठे और ट्रेन की जंजीर खींच दी। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उनका अचानक उठना और तेजी से जाकर ट्रेन का जंजीर खींचना किसी की समझ में नहीं आया।
5: किसने खींची चेन?
2: सर, हमने नहीं किया। हाँ, हमने नहीं किया, इन्होंने किया है। हम तो मना कर रहे थे सर।
1: जी सर, मैंने ही चेन खींची है। सर, मुझे लगा कि आगे की पटरियां उखड़ी हुई हैं।
5: व्हाट? क्या मजाक है? ये आप कैसे कह सकते हैं?
1: श्रीमान, यदि विश्वास नहीं है तो चलकर स्वयं देख लीजिए।
5: आइए आइए, देखते हैं।
1: आइए, हम भी चलते हैं।
5: लेकिन मिस्टर, कान खोलकर सुन लीजिए, अगर बात आपकी गलत निकली ना तो आपको सजा हो सकती है। आइए।
1: ठीक है सर, मुझे मंजूर है।
3: और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की बात सच निकली। कुछ दूरी पर उन्हें पटरियां उखड़ी हुई दिखाई दी।
1: आइए सर, आइए देख लीजिए।
5: अभी तक तो यहाँ भी ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अरे एक मिनट, यहाँ पटरियां तो सच में उखड़ी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ पटरियां उखड़ी हुई हैं। अब मिस्टर, आपको कैसे पता चला?
1: सर देखिए, जब सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन की गति में अचानक परिवर्तन आ गया है और पटरियों की आवाज भी बदल गई है। सामान्य स्थिति में ऐसी आवाज प्रायः सुनाई नहीं देती है। तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है।
5: थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज बहुत से यात्रियों की जान बचा ली।
6: We are so thankful to you. It's amazing. May I know your name, please?
1: I am Dr. Moksh Gundam Vishweshwaraiah.
6: Oh, the engineer in chief of Mysore state.
0: Aur railway sachiv bhi.
5: Namaskar sir.
1: Ji sir, main wahi hoon.
6: Namaskar sir. Namaskar. We were actually going to attend your meeting only. It's actually our privilege to meet you personally. थैंक यू।

0: वेरी मच सर, थैंक यू,
1: धन्यवाद।
2: तो ऐसे थे डॉक्टर विश्वेश्वरैया। बांध बनाने की प्रक्रिया में स्वचालित जल द्वारों का प्रयोग उनका अद्भुत नवाचार था। इस तकनीक को डॉक्टर विश्वेश्वरैया के नाम पर पेटेंट किया गया। आज भी ये प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है।
3: कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के कारण मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का नाम पूरे विश्व में सबसे अधिक चर्चा में रहा। मैसूर राज्य में उनके योगदान को देखते हुए मैसूर के महाराजा ने उन्हें सन 1912 में राज्य का दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया।
2: लोक निर्माण कार्य में उनके अतुल्य योगदान को देखते हुए उन्हें अनेकानेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1904 में उन्हें 50 साल तक लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की मानद सदस्यता दी गई। 1921 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किए गए।
3: सन 1955 में कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। जब सर एम विश्वेश्वरैया 100 साल के हुए तब भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 101 साल की उम्र में 14 अप्रैल 1965 को विश्वेश्वरैया का निधन बेंगलोर आज के बंगलुरु में हो गया।
2: सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता के कारण मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल की गई। समाज के संपूर्ण विकास के उनके कार्यों के कारण ही उन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को उनके अतुल्य योगदान के लिए राष्ट्र और विश्व का आभार।
4: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
5: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी। सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

वाले हैं. दैट्स राइट. आज की हमारी रिक्वेस्ट आर हिट एंड हॉट. अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, मैं हूँ आरजी भावना. और हमारे इस हिट एंड हॉट रिक्वेस्ट आर में, जहाँ पर आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी होती है, जी हाँ दैट्स राइट, आप होते हैं आरजे, यानी कि आपके चुने हुए गाने यहाँ पर होंगे प्ले. पर इसमें मेरी कुछ अलग शर्तें हैं. यहाँ पर हम व्हाट्सएप बंद रखते हैं, सो डिजिटल डिटॉक्स कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन रूबरू होते हैं एक दूसरे से, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट ओनली ऑन फोन कॉल्स. बिल्कुल जी हाँ, उसी दौर की तरह जहाँ पर हम बस रेडियो के पास कान लगाकर बैठे रहते थे और फोन पर डायल किया करते थे. फिर वो भी दौर आया जब अपने आप रीडायल भी हुआ करते थे नंबर, लेकिन फोन की घंटी के साथ साथ कान रेडियो पर कि अब शायद नाम आएगा हमारा, अब शायद आरजे की आवाज फोन पर आएगी और अब शायद रेडियो पर हमारा नाम सुनाई देगा. बस वो बेचैनी, वो तड़प और उसके बाद नाम सुनने की खुशी, आए हाय मानो वर्ल्ड कप जीत लिया हो हमने. बस यही एहसास दोबारा जिंदा करना चाहती हूँ. और आई नो आजकल के इस दौड़ भाग में, रफ्तार में, हमें इस तरह पेशेंटली वेट करना, इंतज़ार जो है ना, वो बहुत ही अनॉय करता है. लेकिन कभी कभी इंतज़ार जब पूरा हो जाए उसमें अलग मज़ा आता है. और इंतज़ार का मिठास, जो इंतज़ार है ना, उसकी मिठास भी बहुत प्यारी होती है, यकीन मानिए, कभी करके देखिए. और उस पर मैं आपको बैकग्राउंड में गाने दे रही हूँ, तो हो गई ना सोने पे सुहागा वाली बात. वेल, आपको पहले फील देती हूँ, वास्तव मूवी को कितने साल हुए हैं पता है आपको?

वेल अंकित कहते हैं कि लास्ट सीन जो है मूवी का उसमें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. जी हाँ, बस ऐसे ही सस्पेंस के साथ आप ये प्रोग्राम सुनने वाले हैं. इस मूवी को कितने साल हुआ आपको बताया, 1999, आज ही के दिन ये फिल्म रिलीज हुई. ये हमें प्रकाश शिंदे जी अक्सर अपडेट देते रहते हैं, सो हमें कोई भी परवाह नहीं है कि अगर हम कभी भूल जाएं तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आप लोगों की तरफ से आ जाती है. मैं तो कहती हूँ आप किसी दिन इस तरफ भी आ जाइए. और इसी के लिए तो आपकी आवाज़ सुनने के लिए मैं भी बेताब हूँ. वेल, इस फिल्म की एनिवर्सरी है तो इसी फिल्म से एक और बहुत ही प्यारा गाना सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में आप सुनेंगे. लेकिन उससे पहले लेट मी गिव यू द काउंटडाउन. और काउंटडाउन से पहले एक और चीज़, आप जब अपने गाने की रिक्वेस्ट दें तो मुझे ये बात ज़रूर बताइए कि वो कौन सा गाना है जिस गाने को सुनते ही आपके पास मेन कैरेक्टर एनर्जी आ जाती है. यानी कि कोई ऐसा गाना होता है ना जहाँ पर आपको लगता है कि बस आप ही सायरा बानू हैं और आपके लिए ही सुनील दत्त गाना गा रहे हैं. भले ही किशोर कुमार ने गाया हो, छुपके से सुनील दत्त लिपसिंग कर रहे हैं, बट फिर भी आप ही सायरा बानू हैं. ऐसे कोई मेन कैरेक्टर एनर्जी वाला गाना जिसे सुनते ही आपको लगता है आप ही है सायरा बानू और आपके लिए कोई गाना गा रहा है यार, आपके ही इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूम रही है, यानी मेन कैरेक्टर एनर्जी वाला गाना, वो आप बताइए मुझे. कॉल कीजिए

जी किस पर करेंगे कॉल, नंबर आपके बताती हूँ 022, ये तो हमारा कोड है 4515 4132। ओके, नोट डाउन कर लीजिए 4515 4132। एंड द काउंट डाउन बिगेंस नाउ 3 2 1। एंड लाइंस खुल चुकी हैं, कॉल्स का इंतजार हो रहा है। एंड इसी के साथ ही अगला गाना, तब तक एंजॉय कीजिए विद दैट। मैं आरजे भावना मिलूंगी आपसे गाने के उस पार।

1:15 ऑन द क्लॉक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 विद मी आरजे भावना। और टेक्निकल ग्लिच तो हमारे जिंदगी में बस यूं ही चलते रहता है, हमें तो अब आदत हो चुकी है इस चीज की। लेकिन द शो मस्ट गो ऑन, इसका मतलब ये नहीं है कि गाने यहीं रुक जाएंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, झंडा हम आगे फहराते रहेंगे। और ये झंडा होगा हमारी जीत का, क्योंकि पहले लिसनर हमें मिल चुके हैं तालियां। ये है पंकज माहौर जी, काफी कोशिशों के बाद काफी स्मार्टली इनसे ये मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि मैडम हम रिपीटेड कॉलर्स को नहीं लेंगे, और जैसे ही उनका कॉल आया है ये बोलते नहीं नहीं अब हम चेंज कर देते हैं। ये बकायदा मुझे आपकी रग रग पता चल चुकी है, इसीलिए तो फोन लाइंस मैंने शो शुरू होने के वक्त ही खोले। मुझे पता है आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पहले ही हम कॉल कर लेते हैं। ये रिश्ता है ही ऐसा। वैसे कन्फेशन की बात की थी ना मैंने, दूंगी कन्फेशन भी बताऊंगी आपको कि आखिर मेरे दिल में जो बात है वो आपको सुनाना जरूर चाहूंगी। लेकिन पंकज जी ने बड़ा ही प्यारा गाना, बहुत ही मजेदार गाना सजेस्ट किया है। अब क्या है, हर लव स्टोरी में विलन तो होता ही है। अब इतने प्यार भरे गाने के बाद

उनकी एंट्री तो बनती है। तो बस पंकज जी की रिक्वेस्टेड सॉन्ग, जब मैंने उनसे पूछा कि आपके लिए मेन कैरेक्टर एनर्जी सॉन्ग कौन सा है, उन्होंने झट से एक गाना मुझे सजेस्ट किया, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। मैंने बोला ये अलग चीज है, नायक नहीं खलनायक। देन ही टोल्ड मी कि उनका गुस्सा जो है वो खलनायक है और वो नायक है, तो ये उनकी मेन कैरेक्टर एनर्जी है। काफी मजेदार गाने के साथ मजेदार बातें करते हैं पंकज जी। वेल, आपका गाना होगा नेक्स्ट प्ले, ये हमारे पहले लिसनर हैं। विद दैट आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि 1:30 हमारा न्यूज़ होगा और उसके बाद कुछ ही वक्त बचेगा, तो बहुत कम लिसनर्स को मौका मिलने वाला है। बातें कम होंगी, गाने ज़्यादा होंगे, कोशिश लेकिन बरकरार रहनी चाहिए। विद दैट कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में और विनोद राठौड़ की आवाज़ में ये अगला गाना फ्रॉम द मूवी खलनायक।

खलनायक नहीं, नायिका या नायक अगर आपको कोई गाना महसूस कराता है वो हम चाहते हैं। खलनायक तो हम सबके अंदर है, लेकिन हम आज इसे छुट्टी दे रहे हैं। आज हम आपकी मेन कैरेक्टर एनर्जी यानी आपके अंदर के जिस हीरो को आप जगाना चाहते हैं, या फिर शायद दीपा पालकर की तरह, उनकी तरह आप फीमेल लीड जो शाहरुख खान के साथ रोमांस कर रही हो, वैसे कुछ आपके अगर ख्वाब हैं तो यहाँ पूरे कर लीजिए। यकीन मानिए, दीपा पालकर जी कहती हैं कि रईस फिल्म का जो गाना है उड़ी उड़ी जाए, ये अक्सर उन्हें लगता है कि वो शाहरुख खान के साथ रोमांस कर रही हैं। वेल, ये जो सपना है ये तो हर किसी ने देखा है, क्यों? फीमेल जनता हमारी, बताइए बताइए, आपने कौन से एक्टर के साथ कौन से गाने पर रोमांस अपने ही मन में किया होगा, मुझे बताइएगा जरूर। विद दैट, ये अगला गाना आप सुनेंगे दीपा पालकर की रिक्वेस्ट, हमारी दूसरी लिसनर है ये। और अब छोटे से ब्रेक के बाद ठीक 1:40 पर, जी हाँ 1:40 पर आपको मिलूंगी मैं आपकी रिक्वेस्ट लेकर। टिल देन कीप लिसनिंग टू FM Rainbow, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

हेलो हेलो, गरबा का फील जो है, नवरात्रि की जो फील है ना, वो आ गई है इस गाने के साथ. वेल 1:30 आप सुनेंगे न्यूज, लेकिन उससे पहले बड़ा ही प्यारा सा मैसेज आया है हमारे पास. अशोक पाटिल वराली से हमें मैसेज कर रहे हैं. ये मैसेज आपको सुनाऊंगी समाचार के उस पार, क्योंकि ठीक कुछ ही देर में राष्ट्रीय मराठी समाचार सुनेंगे 1:30 यानी 1:30 पर. मिलूंगी आपसे समाचार के उस पार, ओनली ऑन FM रेनबो.

140 ऑन द क्लॉक यानी कि ठीक 2 बजे मेरे जाने का वक्त, ये याद दिलाना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और मुझे पता है बहुत सारी नाराजगी होगी कि हमारी तो बारी ही नहीं आई भाई, हमें तो गाने रिक्वेस्ट करने थे। पर कभी कभी दूसरे की खुशी में भी हमें खुशी ढूंढ लेनी चाहिए, इस बार ना सही अगले बार जरूर, क्योंकि रिक्वेस्ट आर खाली भावना थोड़ी है। शाम को भी आपके पास मौके हैं, जैसे 7 से 8 हमारा एक और रिक्वेस्ट आर है, फिर कल

नई सुबह आएगी, नए रिक्वेस्ट आ रहे होंगे, नए आरजेस होंगे आपकी फरमाइश पूरी करने, और क्या पता शायद वो मेरी कंडीशंस ना रखते हो जैसे मैं कंडीशंस रखती हूँ, क्योंकि मुझे तो बस थोड़ी लालच है आपसे बात करने की. लेकिन इस खुशी के बारे में आपके साथ ज़रूर एक बात शेयर करना चाहूँगी, वो इसलिए कन्फेशन मेरा जो है दिल की बात, कि मैं हूँ थोड़ी झल्ली सी, यानी कि आपको पता है मैं आपकी हर एक बात याद रखूंगी, भले ही नाम भूल जाऊं, लेकिन अगर आपकी आवाज़ मैंने सुनी है और आपसे कोई अगर मैंने बात की है वो मुझे सालों तक याद रहेगी. जैसे नसीम उस्मानी जी, अक्सर हमारी बातें होती थी कि आप भावना जी आप ज़रा ना बादाम खाया करो, नाम याद रहेगा आपको, लेकिन उनकी आवाज़ सुनते ही पहचान जाती थी. फिर इकबाल जी बहन बुलाते थे, पंकज जी दीदी बुलाते हैं, कभी दीदी कभी बहन कभी मैडम, अलग अलग नाम अलग अलग रिश्ते, कभी बेटी, लेकिन ये रिश्ते उन्हीं बातों की वजह से बनते हैं जो आपसे होती हैं, आपकी कहानियाँ, आपकी बातें, शुभदा जी के साथ खाने की बातें, अंजू जी के साथ घूमने फिरने की पिक्चर्स होते हैं शेयर, ये रिश्ता ही तो है. और इसी रिश्ते को और बरकरार रखना है मुझे, तो चाहे कुछ भी हो जाए आपकी और हमारी मुलाकात यहाँ होती रहेगी, अगर यहाँ नहीं तो कहीं और. लेकिन हाँ, याद रखिएगा आपके मैसेज का इंतज़ार हर बार करती हूँ जब कभी मैं यहाँ आती हूँ. जयश्री जी उनको मिस करती हूँ मैं, इकबाल जी से बात कम होती है, आप लोग शायद हमें सुनते हुए मैसेज करना भूल जाएं, लेकिन मैं आपकी बातें हमेशा याद रखती हूँ. नाराज़गी अपनी तरफ, लेकिन प्यार हमेशा अपनी तरफ, और आप लोगों से जो रिश्ता बना है वो चलते रहने वाला है. सो ऐसे ही बातें करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुस्सा भी कीजिए, लेकिन यहीं पर, सिर्फ यहीं पर मिलते रहिए FM रेनबो, बिकॉज ये हमारी एक फैमिली है, और इस फैमिली में अनबन होगी लेकिन प्यार भी उतना होगा, गानों के जरिए वो भी. इनफैक्ट गानों से याद आया, मेघा वर्मा जी शिरडी से, हमारे नई फैमिली मेंबर, जी हाँ, हमें सुनते सुनते, इनफैक्ट उन्होंने कहा भी कि वो साफ सफाई कर रही थी, साफ सफाई करते करते सुबह से सुन रही हैं, और गानों के साथ साथ वो घर की सफाई भी कर रही हैं. चलिए मज़ा आया, आपकी साफ सफाई तो हो रही है, मेरी तो अभी ड्यूटी लगनी बाकी है. खैर, हम करेंगे साफ सफाई अपने घर की बात बाद में, लेकिन इनके लिए जो जोश वाला गाना, जो मेन कैरेक्टर एनर्जी वाला गाना है ना, ये है खान ही, लेकिन सलमान खान, जी हाँ, SP बालासुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज में अगला गाना फ्रॉम द मूवी लव साथिया तूने क्या किया, ये गाना इन्हें एनर्जी से भर देता है. सो आपकी रिक्वेस्ट अगला सॉन्ग, और उसके बाद दो लिसनर्स और आएंगे जिनकी रिक्वेस्ट होगी पूरी. विद दैट चलिए आपको सुनाती हूँ ये अगला गाना विदाउट एनी देरी.

चलिए हमारे पास सेकंड लास्ट लिसनर भी आ चुके हैं, सेकंड लास्ट इसके लिए बिकॉज विजेंद्र घाटोल जी का हमें कॉल आया है। दिल ही दिल में चांदनी गाना सुनना चाहते हैं, लेकिन एक और लिसनर को हम रिक्वेस्ट पूरी कर सकते हैं उनकी भी। वो लास्ट लकी लिसनर कौन होने वाला है वो तो मेरे जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हाउ कैन आई नॉट मेंशन जो आप सभी मेरे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, सुरेश काशनाथ पाटिल, अविनाश दामोदर कड़ू, फिरोज सिगन पोरिया, मुकुंद कुलकर्णी पूना से, प्रशांत पाटिल थाने से, राकेश माथुर धनंजय न्यू मुंबई से, रजनीकांत पाटिल वाधवन, रंजन झारखंड से, हमारे साथ अंजू अंधेरी ईस्ट से हैं, डॉक्टर अंजू, प्रमोद चिंचोलकर जी, केतना पंडित पूना से, बाबा दादर से, राजेंद्र परमार हमारे लिसनर, अंकुश कुरुड़ श्रीरामपुर से, सुरेश वैष्णव जी ललिता अहमदाबाद से, मेहर अरोरा श्री गंगानगर राजस्थान से अपने परिवार के साथ, मेहर ममता कीर्ति भूमिका, और वी हैव मुकेश वालिया देहरादून से, आयुब शाम रावती से, बाकी के लिसनर्स के नाम इस गाने के बाद जो कि है विजेंद्र घाटोल जी की रिक्वेस्ट, और उसके बाद लास्ट फाइनल लिसनर लकी लिसनर कौन होने वाला है ये बताएंगे, लेकिन इस गाने के उस पार।

152 ऑन द क्लॉक. वेल, फोन लाइंस आपकी लगता है आपने कोशिश छोड़ दी है. कोई बात नहीं, आप मेरी तरफ से आप सभी के लिए मैं गाना प्ले करने वाली हूँ. जाने से पहले आप लोगों के लिए डेडिकेटेड, जिनके कॉल्स नहीं लग पाए, जिन्होंने कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई, उम्मीद नहीं हारते, क्योंकि शाम को रॉबिन आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने वाले हैं. जी हाँ, शाम को आज रॉबिन मिलेंगे आपसे और आपकी रिक्वेस्ट पूरी होगी. और अगर फिर भी मौका ना मिले तो कल फिर सुबह होगी. क्यों? वेल, जाने से पहले आपके जो मैसेजेस हैं वो तो बनते हैं. आपका नाम बताना. हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं. इनफैक्ट आज तो लिस्ट जो है ख़त्म ही नहीं हो रही है, तो कुछ वक्त मुझे झेल लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए लिस्ट, क्योंकि काफ़ी लंबी है. जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पॉल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, गगनदीप ठंडी, अशोक पाटिल वराली से काफ़ी अच्छा मैसेज भेजा था इन्होंने आपको, वो बताना भूल गई. वो कह रहे थे कि उनका पहला प्यार, जो मैंने आपसे कहा था कि पहले प्यार की दास्तां मुलाकात तो बताइए, तो 1994 की बात है जब वो अपनी बीवी के साथ जो शादी की उन्होंने. लेकिन ये कहानी शुरू हुई बस के अंदर, जब बस कंडक्टर ने उनसे झगड़ा कर लिया 20 रुपए के लिए. बस की टिकट 2 रुपए थी. लेकिन तब जो अब उनकी बीवी है, तब उन्होंने उनकी मदद की. 2 रुपए कम पड़ रहे थे ना, तो 2 रुपए उन्होंने दे दिए उन्हें मदद करने के लिए. और फिर क्या था, वर्ली कोलीवाड़ा से प्रभा देवी रेलवे स्टेशन हर दिन सफर करते करते बस स्टॉप से लेकर रेलवे स्टेशन के बीच इनकी कहानी हुई. यही है ना कहानी, अशोक जी कंफर्म कीजिएगा. वेल, उसके बाद इनकी शादी हो गई. बट 11 अक्टूबर 2022 को उनका देहांत हो गया. लेकिन कहते हैं ना, यादें इतनी मीठी और प्यारी होती हैं कि हर एक पल हसीन बना देती हैं. वो हैं या ना, लेकिन उनकी यादें हमेशा इनके साथ हैं. और इन गानों के जरिए शायद उनकी यादों को और मिठास मिल जाती है. वेल, विद दैट, इतने प्यार भरे मैसेजेस के बाद कुछ और प्यार बरसाते हैं आप लोगों के नाम. मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा. ये बड़ा टंग ट्विस्टर लगता है जब इतने सारे नाम एक साथ आते हैं. अजय साखरे इंदौर से. वैन वी हैव हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, मणि पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, अंकित तत्ता केदार पंडरपुर से, शुभदा जी, संजय दर्शन, यशवंत आठमुड़े, प्रकाश शिंदे, गुरमीत सिंह, मीता सिंह, हरजिंदर छिंदा, जसवीर नथाना से, एंड सीता और गीता. वी ऑल्सो हैव कलवा थाने से वंदना सूर्यवंशी, दीपा पालकर, निश्चल जम्मू से चेतन कुमार, अभिजीत गवानकर, टिकटू गवानकर, आई रिमेंबर दिस, संदीप कुमार, पंकज महोर, मीना जी, विजेंद्र घाटोल, प्रणव शिंदे एंड अशोक पाटिल वराली जी. एंड फाइनली द लिस्ट इज कंप्लीट आप सभी लिसनर के लिए. चलिए अगला गाना, क्योंकि गरबे की बात हो रही है, नवरात्रि आने वाला है, तो थोड़ा गरबे के साथ हम शुरुआत करते हैं. फील कहीं नहीं जाने देंगे. दो गाने बैक टू बैक. और अगला गाना आप लोगों के लिए, यानी सेकंड सॉन्ग आप लोगों के लिए स्पेशली मेरे तरफ से. विद दैट, मैं आरजे भावना लेती हूँ इजाजत. मिलूंगी आपसे यूं ही चलते चलते ओनली ऑन FM रेनबो, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स.

0: Prime Minister has said that the target is now to create 6 crore lakhpati didis across the country.
1: 3 crore behnon ko humne lakhpati didi banane ka lakshya tay kiya tha, usko paar kar liya. Ab हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं. 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है.
0: शिल्पा देशमुख, अ बेनिफिशियरी फ्रॉम परभनी डिस्ट्रिक्ट, शेयर्ड हर एक्सपीरियंस विद आकाशवाणी.
2: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है. इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो गई है. इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है.
0: थ्रू द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन, द लखपति दीदी इनिशिएटिव इज स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज, विलेजेस एंड रूरल इकोनॉमी, कंट्रीब्यूटिंग टू द विजन ऑफ विकसित भारत. समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी न्यूज, छत्रपति संभाजीनगर.
3: India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall at isolated places over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura during the day. After the Met Department of Himachal Pradesh issued a yellow alert, the weather today has taken a turn once again. Snowfall is occurring in the state's high altitude mountainous regions while other areas are experiencing thunderstorms and rain. More from our correspondent.
4: Due to the activity of a western disturbance, the weather in Himachal Pradesh has shifted. High altitude areas are witnessing snowfall, while lower regions are experiencing hailstorms and thunderstorms accompanied by rain. There are also apprehensions of damage to crops. This precipitation has led to a drop in temperatures and an increase in the chill. Snowfall has occurred on the high peaks of Lahul Spiti, Pangi and Kullu, while the high peaks of Pir Panjal range, including the Rohtang Pass, are now draped in a blanket of snow. According to the Meteorological Center in Shimla, a yellow alert has been issued for thunderstorms and lightning in the district of Una, Bilaspur, Hamirpur, Kangra, Mandi, Shimla and Solan for the next 4 days, while light snowfall is expected in Kullu and Lahul Spiti. With Ritesh Kapoor's report, Jigyasa Pandey, Akashmani News.
3: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says present government's policy focuses on solutions for all citizens, addresses Vikasit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar stresses the need for India and Africa to turn their young populations into skilled and empowered citizens. RBI raises repo rate by 25 basis points to 5.5% in nearly 4 years. Also projects GDP growth rate at 7.1% for current financial year. IMD forecasts heavy rainfall over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. And India calls for stronger climate action and faster implementation of Paris Agreement at pre-COP31 meeting in Fiji today. And with that, we end the midday news.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित. उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया. विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया. रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया. चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना. और भारत ने 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आज फिजी में एक बैठक में पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है. नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की. प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है.
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा.

0: आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
0: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती। तब इम्पोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान तलाश रहा है।
0: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया था, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन यह भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
1: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की।
2: जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं।
3: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उधर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ के पास पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 वर्ष की जनसेवा में असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा भारतीय कृषि के बदलाव पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। ये लेख प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। इसमें गुजरात सहित भारतीय कृषि के व्यापक परिवर्तन की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत के विकास में उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और भारत बेल्जियम के बीच साझेदारी को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
5: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
6: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
7: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं। समिति ने 2-4 मतों से अपने रुख को सोच समझकर मौद्रिक शक्ति की ओर बदलने का भी फैसला किया है।
6: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 4-2।
1: रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है, बिना किसी सीमा के विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
8: ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न

0: सतत आजीविका गतिविधियों के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ऋण की सुविधा, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश भर में अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
1: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
0: परभणी जिले की शिल्पा देशमुख ने इस संबंध में अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए।
2: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है।
0: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवारों, गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने में लखपति दीदी महत्वपूर्ण पहल है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
3: दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ SJ शंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों, मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ हैं और हम भी अकेले नहीं हैं और हमारा साथ रहेगा पूरे 3 घंटे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अंदाज अलग हो सकता है लेकिन प्यार और अपनापन एक ही है। तो इसी प्यार को सलाम करते हुए हाजिर है आपका अपना आरजे रॉबिन चौबे और शुरू करते हैं लव इज जिंदगी एफएम रेनबो 107.1 पर। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर 80s का रेट्रो ट्रेंड खूब चल रहा है। लोग अपनी तस्वीरों को दे रहे हैं।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। चलिए कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनके नाम लेते हैं। मुकेश जी जुड़े हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि यू हैव टेकन मी बैक टू द गोल्डन पीरियड। जी सर, इसीलिए ऐसे मैंने ये थीम चूज़ किया है कि आप अपने यादों के पन्ने को पलटें और वहाँ पहुँचें। पंकज मोहड़ जी गुड इवनिंग बोल रहे हैं, संजय दर्शन जी आपको गुड इवनिंग, विजेंद्र घटोल जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्लेलिस्ट है बिल्कुल, प्रणव शिंदे गुड इवनिंग सर, राजेंद्र परमार एंड स्मिता विवेक, रजनीकांत पाटिल गुड इवनिंग, फिरोज़ जी को भी गुड इवनिंग और राकेश माथुर गुड इवनिंग। तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ और अभी बहुत सारे गाने आने बाकी हैं। दोस्तों 80s का दौर सिर्फ रोमांस और स्लो मेलोडीज़ का नहीं था, इस दौर में गानों में एक अलग ही मस्ती थी, थोड़ा नटखटपन और भरपूर एंटरटेनमेंट। तो चलिए लव इज़ ज़िंदगी में 80s की आज की रंगीन शाम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उस दौर में जहां टेंशन थोड़ी कम और मस्ती थोड़ी ज़्यादा हुआ करती थी। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 107.1 और मैं हूं आपका दोस्त RJ रॉबिन।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। और भी कुछ लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, आपको भी गुड इवनिंग। अंकित जी बोल रहे हैं आप तो जेन जी हैं, देन हाउ डू यू नो सर, जेन जी में भी ये सारे गाने बहुत फेमस है। ऐसा नहीं है कि हम जेन जी वाले ये गाने नहीं सुनते, बहुत फेमस है 80s के गाने। और चुभदा जी कह रही हैं कि बहुत अच्छा प्लेलिस्ट है। और दत्ता जी की भी गुड इवनिंग बोल रहे हैं, और सबको नमस्ते। और भी बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो एक एक करके मैं सबका नाम लेते रहूँगा और गाने भी हम प्ले करते जाएंगे। दोस्तों 80s का दौर सिर्फ डिस्को और मस्ती के लिए याद नहीं करते, इस दौर में मोहब्बत भी बड़े खूबसूरत अंदाज में बयां होती थी। कभी किसी की आंखों में प्यार नजर आया, कभी किसी की मुस्कान में, और कभी बस सामने वाले को देखकर दिल ने कह दिया शायद यही प्यार है। तो चलिए 80s की इसी रोमांटिक हवा में थोड़ा और खो जाते हैं, क्योंकि कुछ मोहब्बतें वक्त गुजरने के बाद भी कभी फीकी नहीं पड़ती। FM रेनबो 107.1 पर मैं हूँ RJ रॉबिन, और यह है लव इज जिंदगी। सुनते हैं अगले कुछ नगमे।

तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे 80s के गाने काफ़ी अच्छे लगे होंगे और दत्ता केदार जी भी कह रहे हैं कि उनके गाने काफ़ी पसंद आ रहे हैं उनको। यह 80s का मैजिक ही ऐसा है। लेकिन अब दोस्तों, लव इज़ ज़िंदगी को हम एक बार फिर से रूबरू हुए उस हसीन 80s के दौर में, और जहाँ रंग थोड़े और गहरे थे, धुनों में अलग ही मिठास थी। आज के दौर में जब 80s की तस्वीरें और रेट्रो अंदाज फिर से ट्रेंड में है, तो हमने सोचा क्यों ना उन यादों को गाने के साथ भी जिया जाए। और डिस्को हो, मस्ती हो, या वो एवरग्रीन मेलोडीज, 80s ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं हूँ आपका आरजे रॉबिन, और करते हैं लव जिंदगी को विदा और मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में अंदाजे बयां में। सुनते रहिए FM रेनबो 107.1। मिलते हैं आपसे समाचार के बाद ठीक 6:15 पर।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: दोस्तों, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में कहना आसान नहीं होता। बस एक शेर, एक गजल और कुछ धुनें उन्हें दिल तक पहुंचा देती हैं। नमस्कार, मैं हूं आरजे रॉबिन और आप सुन रहे हैं अंदाज़े बयां, जहां बात होगी उन गीतों की, उन शेरों की, जो कभी दिल की बात कह जाते हैं तो कभी पुरानी यादों को फिर से जगा देते हैं। तो चलिए आज की इस महफिल की शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत शेर के साथ। तेरी मुस्कान में कुछ ऐसी बात है कि हर पल तेरा ही ख्याल साथ है। तेरी मुस्कान में कुछ ऐसी बात है कि हर पल तेरा ही ख्याल साथ है। तू पास हो तो दुनिया खूबसूरत लगती है, तू दूर हो तो भी दिल में तेरी ही बात है। तू पास हो तो दुनिया खूबसूरत लगती है, तू दूर हो तो भी दिल में तेरी ही बात है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अंदाज़े बयां एफएम रेनबो 107.1 पर और मैं हूं आपका दोस्त आरजे रॉबिन चौबे। एक शेर अर्ज किया है, कभी तेरी गुफ्तगू में शाम ढल जाती है, कभी तेरी खामोशी भी दिल को छू जाती है, ये इश्क भी अजीब फितरत रखता है, तू सामने हो तो दुनिया भूल जाती है। दोस्तों मोहब्बत की खूबसूरती शायद यही है कि इसमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, बस किसी की एक मुस्कुराहट, एक आवाज़ या एक नज़र दिल में पूरी कहानी लिख देती है। तो इसी खूबसूरत एहसास को थोड़ा और महसूस करते हैं एक ऐसे नगमे के साथ जिसमें इश्क भी है, नज़ाकत भी है और एक खूबसूरत सा ख्याल भी।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दोस्तों, कभी कभी किसी का चेहरा सिर्फ चेहरा नहीं होता, उसमें हमारी पूरी दुनिया बस जाती है। उसकी एक झलक दिल को सुकून देती है और उसकी याद खामोशी में भी एक खूबसूरत सा शोर पैदा करती है। तो इसी खूबसूरत एहसास को और एक बेहद हसीन चेहरे की याद के साथ सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, कुछ अल्फाज दिल तक तभी पहुंचते हैं जब उन्हें सुकून और मोहब्बत के साथ कहा जाए। मोहब्बत की अपनी एक रवानी होती है, ना कोई शोर ना कोई जल्दबाजी। अगला गीत भी उसी नर्म एहसास का खूबसूरत तरन्नुम है। सुनिए राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में, बोलना हल्के हल्के।

दोस्तों, अब समय आ रहा है अंदाजे प्यासे विदा लेने का, और ठीक 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार मराठी में। उसके बाद हम 7:10 पे आपसे दोबारा मिलेंगे आपके चाहते कार्यक्रम हम तुम। और आज की हमारी थीम है, आपको ऐसे गाने की चॉइसेस भेजनी है जिनमें सनम शब्द का जिक्र हो, यानी कि ऐसे गाने जिसमें सनम आता हो। तो फटाफट सोचिए, बहुत से गाने हैं ऐसे सनम के ऊपर, तो भेजिए और हम उनको प्ले करते जाएंगे। और सुनते हैं ये आखिरी गाना अंदाज़े बयां में।

0: आणि मुंबईच्या राष्ट्रीय बातमीपत्रात नमस्कार.
1: तो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और शुरू कर रहे हैं हम तुम, जिसमें आपके चॉइस के गाने हम प्ले करेंगे. और जो आज की हमारी थीम है सनम, उस पर बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है और मैं ट्राई करूंगा कि सबके गाने प्ले हों जितने मैं कर सकूं. जो पहला गाना मैं प्ले करने जा रहा हूं उसकी रिक्वेस्ट की है दीपा पालकर जी ने, तो चलिए सुनते हैं ये गाना.

0: बिन तेरे सनम, इसका फरमाइश जो किया था बहुत लोगों ने किया है, सुमित प्रकाश, काजल कक्कड़, पंकज महोर, हितेंद्र दास, मुकेश कश्यप और उनकी पूरी फैमिली। तो चलिए अगला गाना सुनते हैं, सनम मेरे सनम, और इसकी फरमाइश की है असीम राजपाल जी ने।
1: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अगला गाना आ रहा है विजेंद्र खटोल जी का, सनम मेरे हमराज़।

तो दोस्तों, अब समय आ रहा है आपसे विदा लेने का। हम तुम में मैंने आपके बहुत सारे गाने सुनाए सनम पे, कुछ लोगों के गाने प्ले नहीं कर पाए, कुछ लोगों के नाम नहीं ले पाया, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। अगली बार जिनके चॉइस के गाने प्ले नहीं कर पाया हूँ, अगली बार प्ले करूँगा। और अब एक आखिरी गाना बचेगा, तेरे दर पर सनम हम चले आए, और उसके बाद फिर ठीक 8 बजे आप सुनेंगे समाचार, और उसके बाद जुड़ेंगे आपसे आरजे गिरिजा अपने इंग्लिश के बेहतरीन गाने के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। टेक केयर एंड बाय बाय।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की है। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्षों में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे 5.5% कर दिया। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी।
2: जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने भारत के विकास और वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने श्री मोदी को हमारे समय का अवतार बताया और कहा कि उन्होंने भारतीयों में अधिक आत्मविश्वास और गर्व की भावना जगाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भी श्री मोदी को बधाई दी है और भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और लोकतंत्र में लगातार 25 वर्ष के नेतृत्व को एक दुर्लभ उपलब्धि करार दिया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति डुमा बोको ने भी श्री मोदी को बधाई देते हुए भारत के लोगों के प्रति उनके समर्पण और सेवा की सराहना की और दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता की उम्मीद की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। आईएमसी 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन जीएसएमए के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुक्त, खुले और नियम आधारित वैश्विक समुद्री व्यवस्था का आह्वान किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग के लिए अपने संदेश में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं।
2: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोव, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे। उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
1: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ भारत की बातचीत की रूस और यूक्रेन दोनों ने सराहना की है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देने की भारत की तत्परता की सराहना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनके यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदला गया है।
3: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा की पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को सस्ता, भरोसेमंद और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है।
4: Is so important. We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable, and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.
3: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि ISA प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और भारत की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है।
5: माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में स्थापना दिवस पर 1000 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था, अगर हम 2026 में देखें जब दुनिया 3000 गीगावाट कर चुकी है, तो उनकी दूरदर्शिता सही मायने में दिखलाता है।
3: आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन चुका है। वर्तमान में 129 देश इसके सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं। भारत के नेतृत्व में ISA का उद्देश्य लोगों तक ऊर्जा की पहुंच को बेहतर बनाने के साथ साथ दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
6: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
7: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति

0: यूपी से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं।
1: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है। आरबीआई ने कहा है कि इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए वरिष्ठ भारतीय और ईएफटीए के अधिकारियों, उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सोआई को देने की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट।
2: स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए ये सम्मान देने की घोषणा की है। उन्होंने रसायन विज्ञान में दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया। दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की करीब 100 वर्ष पुरानी गुत्थी सुलझाई है। उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक दूसरे का प्रतिबंध दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो अणुओं में से सिर्फ एक ही के रूप कैसे बनाया जा सकता है। ये खोज दवाओं सहित कई तरह से रसायन बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित किए जाएंगे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान के लिए भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सोआई को देने की घोषणा की है। और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with News at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Completes 25 years of continuous public service as head of government. India condemns attacks on commercial shipping in Black Sea region, says New Delhi engaging Moscow and Kiev to bring peace. Russia expresses gratitude to India for its readiness to contribute to resolving the Ukraine conflict. RBI raises repo rate by 25 basis points to 5.5% in nearly 4 years. Also projects GDP growth rate at 7.1% for current financial year. Prime Minister to inaugurate India Mobile Congress in New Delhi tomorrow. French-Japanese scientists duo Henri B. Kagan and Kenzo Sui win 2026 Nobel Prize in Chemistry for solving molecular asymmetry mystery. And Paralympic champions Pramod Bhagat and Bhavina Patel to lead India as flag bearers at Asian Para Games beginning in Japan later this month. Prime Minister Narendra Modi today completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की उपलब्धता बेहतर हुई है और इसकी कीमतों में भी कमी आ रही है। उपभोक्ता मामले खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इस साल खरीफ प्याज की खेती बढ़ी है, फसल की स्थिति अच्छी है और मंडियों में प्याज की आवक भी बढ़ रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से नई

खरीफ प्याज की आवक शुरू हो गई है। आने वाले हफ्तों में इन राज्यों से आवक और बढ़ने की उम्मीद है। इससे त्योहारी मौसम में बाजार में प्याज की उपलब्धता बेहतर होगी। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। कनाडा के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार डेविड मॉरिसन का भारत दौरा आज समाप्त हो गया। डेविड मॉरिसन 3 दिन के भारत दौरे पर थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली में हुई बैठक दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर चल रही द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत आयोजित की गई। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रोग्राम चल रहा है रंग महफिल। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। गजलों का ये सफर सिर्फ 10 या 20 मिनट का नहीं, पूरे एक घंटे का है। 12 बजे तक हम और आप रहेंगे साथ खूबसूरत गजलों के साथ और खूबसूरत शायरों की लिखी हुई कुछ दिलकश नज़मों के साथ। और ये सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा, आप और हम साथ रहेंगे। और इसके साथ साथ ये तो जो गज़ल अभी आपने सुनी जो अगस्त पाक की है, जगजीत साहब, मतलब एक ऐसी वॉइस जिसकी आवाज़ में आप कोई भी गज़ल सुनी है अपने आप में वो ऐसा लगता है जैसे जिंदा सी हो गई हो। और गज़ल या फिर ये कह लीजिए कि कुछ नज़में ऐसी हैं जिसमें अगर आप किसी की तारीफ करें ना और उसको आवाज़ मिल जाए।

पंकज उदास साहब की, तो वो कुछ ये रंग लाती हैं। ये गजल पंकज उदास साहब की आवाज में आपके लिए, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेडियो पर।

रंगे महफिल, मैं हूं आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। जब शायरों की बात होती है तो गुलजार साहब का जिक्र ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। उनकी लिखी हुई लाइन्स और उनकी कलम से निकले हुए जो अल्फाज होते हैं ना, वो इतना कुछ कह जाते हैं चंद लफ्ज़ों में ही कि आप सोचते रह जाओ कि क्या कह गए। उन्हीं में से कुछ अल्फाज ये हैं कि हवा गुजर गई, पत्ते थे कुछ हिले भी नहीं। हवा गुजर गई, पत्ते थे कुछ हिले भी नहीं। वो मेरे शहर में आए और हमसे मिले भी नहीं। ये कैसा रिश्ता हुआ इश्क में वफा का भला, ये कैसा रिश्ता हुआ इश्क में वफा का भला। तमाम उम्र में दो चार छः गिले भी नहीं। इस उम्र में भी कोई अच्छा लगता है लेकिन, इस उम्र में भी कोई अच्छा लगता है लेकिन। दुआ सलाम के मासूम सिलसिले भी नहीं। और अब जो गजल मैं पेश कर रही हूँ ना आपके लिए, इसमें जगजीत साहब की आवाज़ तो है ही, उसके अलावा लता जी और आशा जी की भी आवाज़ है। दिल कहीं होश कहीं से, बेहद खूबसूरत गजल है ये। और सुनिएगा, अगर कुछ याद आए तो याद कर लीजिएगा।

खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं।

दर्द हल्का है, सांस जरा भारी है। दर्द हल्का है, सांस जरा भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है। आपके बाद हर घड़ी हमने, आपके बाद हर घड़ी हमने आप ही के साथ गुजारी है। रात को चांदनी तो उड़ा दो, दिन की चादर अभी उतारी है। शाख पर कोई कह कहा तो खिले, कैसी चुप सी चमन पितारी है। कल का हर वाक्या तुम्हारा था, कल का हर वाक्या तुम्हारा था, आज की दास्तां हमारी है।

तलब इतनी है कि सीने से लग जाऊं तेरे, तलब इतनी है कि सीने से लग जाऊं तेरे, हक इतना भी नहीं कि करीब से गुजर जाऊं।

और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने के लिए। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। तब तक छोड़े जा रही हूँ आपके खूबसूरत गजल के साथ, क्योंकि आकाशवाणी FM रेनबो पर गजलों का, गीतों का सिलसिला कभी नहीं थमता।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा आयोजित हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। रिजर्व बैंक ने करीब 3.5 साल बाद प्रमुख नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 5.5% किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु और सेवा कर परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडप में होगी। भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस आज मनाया जाएगा। इस वर्ष समारोह की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाना है। दिल्ली में दृष्टि परियोजना के तहत आधुनिक सर्वे और मैपिंग सिस्टम बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 65 करोड़ रुपए मंजूर किए। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सोआई को देने की घोषणा की गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान नियुक्त किया। पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भावना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह मिस्र के काहिरा में आज से शुरू होने वाले ISSF विश्व कप 2026 में 35 सदस्यीय भारतीय निशानेबाज टीम की अगुवाई करेंगे। और मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान जताया। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, माँ का खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

नमस्कार, पेश है आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा आयोजित हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा उत्तर प्रदेश के काशी में संपन्न हुई। रिजर्व बैंक ने करीब 3.5 साल बाद प्रमुख नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 5.5% किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु और सेवा कर परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस आज मनाया जाएगा। इस वर्ष समारोह की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। दिल्ली में दृष्टि परियोजना के तहत आधुनिक सर्वे और मैपिंग सिस्टम बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 65 करोड़ रुपये मंजूर किए। रूस की सेना में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की रिहाई के प्रयास तेज। विदेश मंत्रालय ने बताया, रूस के अधिकारियों से 69 और भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी मांगी गई। अब तक 139 भारतीय नागरिकों को रिहा कराया जा चुका है। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की गई है। पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भावना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह मिस्र के काहिरा में आज से शुरू होने वाले ISSF विश्व कप 2026 में 35 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी टीम की अगुवाई करेंगे। और मौसम विभाग के अनुसार आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रिंबो पर आइए अब आपको ले चलते हैं अपने अगले सफर की ओर, यानी सुहानी रात के सफर पर। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

नमस्कार, प्रस्तुत है आकाशवाणी रेनबो पर मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा आयोजित हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा

यात्रा उत्तर प्रदेश के काशी में संपन्न हुई। रिजर्व बैंक ने करीब 3.5 साल बाद प्रमुख नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 5.5% किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु और सेवा कर परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस आज मनाया जाएगा। इस वर्ष समारोह की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। दिल्ली में दृष्टि परियोजना के तहत आधुनिक सर्वे और मैपिंग सिस्टम बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 65 करोड़ रुपए मंजूर किए। रूस की सेना में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की रिहाई के प्रयास तेज। विदेश मंत्रालय ने बताया कि रूस के अधिकारियों से 69 और भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी मांगी गई। अब तक 139 भारतीय नागरिकों को रिहा कराया जा चुका है। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुवाई को देने की घोषणा की गई है। पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भावना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह मिस्र के काहिरा में आज से शुरू होने वाले ISSF विश्व कप 2026 में 35 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी टीम की अगुवाई करेंगे। और मौसम विभाग के अनुसार आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब सुनते हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे गीत जिन्हें भुलाना वाकई बहुत मुश्किल है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु और सेवा कर परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस आज मनाया जाएगा। इस वर्ष समारोह की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आइवरी कोस्ट गणराज्य की विदेश राज्य मंत्री नियाले काबा से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। रूस की सेना में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की रिहाई के प्रयास तेज। विदेश मंत्रालय ने बताया, रूस के अधिकारियों से 69 और भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी मांगी गई। अब तक 139 भारतीय नागरिकों को रिहा कराया जा चुका है। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुवाई को देने की घोषणा हुई। ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और

सरबजोत सिंह मिस्र के काहिरा में आज से शुरू होने वाले आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में 35 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी टीम की अगुवाई करेंगे। और मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान जताया। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब ले चलते हैं आपको हमारे अगले सफर की ओर, जिसका नाम है मिडनाइट मेलोडीज। तो लेते हैं आनंद कुछ ऐसे ही गीतों का जिन्हें इस वक्त सुनने में आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM

सुप्रभात, आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है अब तक के मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में वस्तु और सेवा कर परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारतीय वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। इस वर्ष समारोह की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आइवरी कोस्ट गणराज्य की विदेश राज्य मंत्री नियाले काबा से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। रूस की सेना में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की रिहाई के प्रयास तेज। विदेश मंत्री ने रूस में 69 भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी मांगी। दिल्ली कस्टम ने करीब 515 करोड़ रुपए की कीमत के 165 किलोग्राम जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया। विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई। दिल्ली में दृष्टि परियोजना के तहत आधुनिक सर्वे और मैपिंग सिस्टम बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 65 करोड़ रुपए मंजूर किए। ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह मिश्र के काहिरा में आज से शुरू होने वाले ISSF विश्व कप 2026 में 35 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी टीम की अगुवाई करेंगे। और अंत में मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल्लार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान जताया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ, समय उजला है हमारे अगले प्रोग्राम सारे कामा का। तो यूं जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदिया जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: रामकथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

जिन पते पूजा अद्भुतं तद्भवैः संगीत स्तुति मंगलैः प्रसरता।